मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, डीटीएच, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हो चुके हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार। अब रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू

0: होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खिंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज का विषय है अमरूद का बाग कैसे लगाएं। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम अमरूद का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। अमरूद वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी एवं बलुई दोमट मिट्टी अमरूद की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अमरूद की अनेक किस्में हैं, जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा। इनमें से जो भी प्रजाति का पौधा आपको मिल जाए ले करके लगा सकते हैं। अमरूद के पौधे लगाने का उपयुक्त समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक है। यह समय है जब आप अमरूद की बाग या अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। बाग लगाने के लिए पहले खेत को जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद 8-8 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना लिए जाते हैं। ये गड्ढे 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे होते हैं। गड्ढे बनाते समय ऊपर वाली आधी मिट्टी एक तरफ और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे को भरते हैं। ऊपर वाली आधी मिट्टी 30 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं और फिर मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। गड्ढे की भराई इस तरह करनी चाहिए कि गड्ढे की मिट्टी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई हो। यदि गड्ढा भरने पर बारिश हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन यदि बारिश न हो तो सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो ऊपर से थोड़ा मिट्टी डालकर उसे ज़मीन के सतह में कर लेना चाहिए। इसके बाद पौधे को गड्ढे के बीचों बीच लगा देते हैं। पौधे को मिट्टी में उतनी ही गहराई तक दबाना चाहिए जितनी गहराई तक वह पौधशाला में दबा था। रोपाई करते समय पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर सिंचाई कर देनी चाहिए। रोपाई करते समय ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, और बदली हुई है या शाम का समय है तो ऐसे समय में ही रोपाई करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। पौधा लगभग 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिसमें कलम की गांठ अच्छी तरह जुड़ी होनी चाहिए तथा वह किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। पौधों की रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद अमरूद के बाग की देखभाल करते रहना चाहिए। अच्छे फल और अच्छी गुणवत्ता के लिए पौधों को उर्वरक भी देना ज़रूरी है। 1 से 2 साल पुराने पौधों को 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 110 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से देना चाहिए। फलत वाले पौधों को यानी जो 6 साल से ऊपर हैं उन्हें 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 650 ग्राम यूरिया, 950 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। इन उर्वरकों को 2 बार में जुलाई माह में और सितंबर अक्टूबर माह में देना चाहिए। गोबर की खाद की संपूर्ण मात्रा जून माह में ही दे दी जाती है। उर्वरकों को पौधों के चारों तरफ तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर

0: उनके फैलाव के नीचे देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक देने के बाद हल्की गुड़ाई करके उन्हें मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। कभी कभी अमरूद के पौधों पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए 450 ग्राम जिंक सल्फेट व 300 ग्राम भुजा हुआ चूना को लगभग 75 लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर मार्च अप्रैल माह तथा जून जुलाई माह में छिड़काव करना चाहिए। पुराने व फलदार वृक्षों की सिंचाई बरसात के बाद शुरू करते हैं। फलदार पौधों को अक्टूबर से जनवरी माह तक 2-3 सिंचाई कर देनी चाहिए। छोटे पौधों को नवंबर माह से फरवरी माह तक 1-1 माह पर तथा मार्च से जून तक 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अमरूद की बागवानी करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमरूद का बाग कैसे लगाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव के मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में उनसे बड़ा न कोई। आइए सब मिलकर भगवान शिव का नमन करें।

शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। आइए सब मिलकर भगवान शिव का पूजन करें।

प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भक्ति में सिर्फ भाव का महत्व होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज की आराधना के गायक कलाकार थे अनुराधा बोडवाल, हरिओम शरण, नंदिनी शरण और नरेंद्र चंचल। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज के दिन इस वक्त आप सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन स्वर और प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 143वीं कड़ी।

मजदूरों ने शुरू के दो हफ्तों में खूब हिम्मत दिखाई, शांति भी खूब रखी। प्रतिदिन की सभाओं में वे बड़ी संख्या में हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञा का स्मरण मैं रोज उन्हें कराता ही था। वे रोज पुकार कर कहते थे, हम मर मिटेंगे पर अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे। लेकिन आखिर में वे कमजोर पड़ते जान पड़े, और जिस प्रकार कमजोर आदमी हिंसक होता है, उसी प्रकार उनमें से जो कमजोर पड़े वे मिलने जाने वालों का द्वेष करने लगे। और मुझे डर मालूम हुआ कि कहीं वे किसी के साथ जबरदस्ती न कर बैठे। रोज की सभा में लोगों की उपस्थिति कम पड़ने लगी। आने वालों के चेहरों पर उदासीनता छाई रहती। मुझे खबर मिली कि मजदूर डगमगाने लगे हैं। मैं परेशान हुआ, ये सोचने लगा कि ऐसे समय में मेरा धर्म क्या हो सकता है। मुझे दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों की हड़ताल का अनुभव था, पर यह अनुभव नया था, जिस प्रतिज्ञा के कारण मेरी प्रेरणा थी, जिसका मैं प्रतिदिन साक्षी बनता था। वो प्रतिज्ञा कैसे टूट सकती है? इस विचार को आप चाहे मेरा अभिमान कह लीजिए अथवा मजदूरों के और सत्य के प्रति मेरा प्रेम। सवेरे का समय था, मैं सभा में बैठा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु सभा में ही मेरे मुंह से निकल गया, यदि मजदूर फिर से दृढ़ न बने और फैसला होने तक हड़ताल को न चला सकें तो मैं तब तक के लिए उपवास करूंगा। जो मजदूर हाजिर थे वे हक्के बक्के रह गए। अनुसुईया बहन की आंखों में आंसू की धारा बह गई। मजदूर बोल उठे, आप नहीं, हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करना चाहिए, हमें माफ करिए, हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मैंने कहा, आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो यही बस है कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मजदूरों को भीख का अन्न खिलाकर हड़ताल चलाना नहीं चाहते। आप कुछ मजदूरी कीजिए और उससे अपनी रोज की रोटी के लायक पैसा कमा लीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर हड़ताल कितने ही दिन क्यों न चले, आप निश्चिंत रह सकेंगे। वल्लभ भाई पटेल मजदूरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी में काम खोज रहे थे, पर वहां कुछ काम मिलने की संभावना नहीं थी। आश्रम की बुनाई शाला में रेत का भराव करने की जरूरत थी। मंगललाल गांधी ने सुझाया कि इस काम में बहुत से मजदूर लगाए जा सकते हैं। मजदूर इसे करने को तैयार हो गए। अनसुईया बहन ने पहली टोकरी उठाई और नदी से रेत की टोकरियां ढोने वाले मजदूरों की एक कतार खड़ी हो गई। वो दृश्य देखने योग्य था। मजदूरों में नया बल आ गया, उन्हें पैसे चुकाने वाले चुकाते चुकाते थक गए। इस उपवास में एक दोष था। मैं ऊपर कह चुका हूं कि मालिकों के साथ मेरा मधुर संबंध था, इसलिए उन पर उपवास का प्रभाव न पड़े ये हो नहीं सकता था। मैं तो जानता था कि सत्याग्रही के नाते मैं उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं सकता। उन पर कोई प्रभाव पड़े तो वो मजदूरों की हड़ताल का ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित उनके दोषों के लिए नहीं था, मजदूरों के दोष के निमित्त से था। मैं मजदूरों का प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोष से मैं दोषित होता था। मालिकों से तो मैं केवल विनती ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उन पर ज्यादती करने के समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवास का प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। प्रभाव पड़ा भी, किंतु मैं अपने उपवास को रोक नहीं सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि ऐसा दोषमय उपवास करना मेरा धर्म।

है। मैंने मालिकों को समझाया, मेरे उपवास के कारण आपको अपना मार्ग छोड़ने की तनिक भी जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कड़वे मीठे ताने भी दिए। उन्हें वैसा करने का अधिकार था। सेठ अम्बालाल इस हड़ताल के विरुद्ध दृढ़ रहने वालों में अग्रगण्य थे। उनकी दृढ़ता आश्चर्यजनक थी। उनकी निष्कपटता का भी मुझे उतना ही अनुभव हुआ जो मुझे पसंद आई। उनसे लड़ना मुझे प्रिय लगा। उनके जैसा अगुआ जिस विरोधी दल में थे उस पर उपवास का पड़ने वाला प्रत्यक्ष प्रभाव मुझे अखरा। फिर उनकी धर्मपत्नी श्री सरला देवी का मेरे प्रति सगी बहन जैसा प्रेम था। मेरे उपवास से उन्हें जो घबराहट होती थी वो मुझसे देखी नहीं जाती थी। मेरे पहले उपवास में अनसुईया बहन दूसरे कई मित्र और मजदूर साथी बने। उन्हें अधिक उपवास न करने के लिए मैं मुश्किल से समझा सका। इस प्रकार चारों ओर प्रेममय वातावरण बन गया। मालिक केवल दयावश होकर समझौते का रास्ता खोजने लगे। अनुसुईया बहन के यहां उनकी चर्चाएं चलने लगी थीं। आनंद शंकर ध्रुव भी बीच में पड़े। आखिर वे पंच नियुक्त हुए और हड़ताल टूटी। मुझे केवल 3 उपवास करने पड़े। मालिकों ने मजदूरों को मिठाई बांटी। 21वें दिन समझौता हुआ। समझौते की सभा में मिल मालिक और उत्तरी विभाग के कमिश्नर मौजूद थे। कमिश्नर ने मजदूरों को सलाह दी थी, आपको हमेशा मिस्टर गांधी जैसा कहें वैसा करना चाहिए। इस घटना के बाद तुरंत ही मुझे इन्हीं कमिश्नर से लड़ना पड़ा था। समय बदला इसलिए वे भी बदल गए और खेड़ा के पाटीदारों को मेरी सलाह न मानने की बात कहने लगे। यह एक दिलचस्प और करुणाजनक घटना का उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। मालिकों की बनवाई हुई मिठाई बहुत ज्यादा थी और सवाल ये खड़ा हो गया था कि वह हजारों मजदूरों में कैसे बांटी जाए। जिस पेड़ की छाया तले मजदूरों ने प्रतिज्ञा की थी वहीं उसे बांटना उचित है। ये सोचकर और दूसरी जगह हजारों मजदूरों को इकट्ठा करना कष्टप्रद होगा ये समझकर पेड़ के आसपास खुले मैदान में बांटने का निश्चय हुआ। अपने भोलेपन के कारण मैंने ये मान लिया कि 21 दिन तक नियम में रहे हुए मजदूर बिना प्रयत्न के कतार में खड़े होकर मिठाई ले लेंगे और अधीर बनकर उस पर टूट नहीं पड़ेंगे। पर मैदान में बांटने की 2-3 रीतियां आजमाई गईं और वे विफल हुई। 2-3 मिनट काम ढंग से चला और फिर बंधी हुई कतार टूट जाती। मजदूरों के नेताओं ने खूब कोशिश की पर वो व्यर्थ सिद्ध हुई। अंत में भीड़ कोलाहल और छीना झपटी यहां तक बढ़ गई कि कुछ मिठाई कुचल कर बर्बाद हो गई। मैदान में बांटना बंद करना पड़ा और बची हुई मिठाई को मुश्किल से बचाकर सेठ अम्बालाल के मिर्जापुर वाले बंगले पर पहुंचाया जा सका। दूसरे दिन ये मिठाई बंगले के मैदान में ही बांटनी पड़ी। इस घटना में निहित हास्यरस तो स्पष्ट ही है, परंतु उसके करुण रस का उल्लेख करना जरूरी है। एक टेक वाले पेड़ के पास मिठाई न बट सकने के कारण का पता लगाने पर मालूम हुआ कि मिठाई बटने की खबर पाकर अहमदाबाद के भिखारी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने कतार तोड़कर मिठाई झपट लेने की कोशिश की थी। ये देश भुखमरी से इतना पीड़ित है कि भिखारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है और वे भोजन पालने के लिए साधारण मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। धनवान लोग ऐसे भिखारियों के लिए काम की व्यवस्था करने के बदले बिना विचारे भिक्षा देकर उन्हें पोसते हैं।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन स्वर और प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। समय है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनयपूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे।

प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे रोज की ही तरह सुबह 9:30 पर, जिसे हम रिले करते हैं अपने लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनिएगा उप शास्त्रीय गायन। कलाकार होंगे अशोक कुमार झा। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित चितरंजन ज्योतिषी का गायन। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर आज कलाकार

0: होंगे अमलेश कुमार पांडे। इनके स्वर में लोकगीत आनंद आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी आराधना विश्वकर्मा और रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के स्वर में गजलें। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण विषय पर फोन इन कार्यक्रम। इसके साथ ही होगा जायका और गृहलक्ष्मी टिप्स। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज हमारे युवा साथियों के लिए आकर्षण रहेगा आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:30 पर आज किसान भाई सुनेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर डंगर राम भारद्वाज से बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा सुनिएगा 8:45 पर। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुने का कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं 10:00 कार्यक्रम झनकार में, शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रस माधुरी में। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः स्वनिवासे भारतसर्वकारस्य सचिवैः सह तृतीय उच्चस्तरीय उपवेशनस्य अध्यक्षता कृता तथा च आधारभूतसंरचना, सम्पर्कं, सुरक्षा, विदेशकार्यं तथा शासनम् इत्येतैः सम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भावी कार्यसूच्यां चर्चा विकृता। सः सचिवान् देशस्य भविष्यं कथं भवितव्यम् इति दीर्घकालिक दृष्टिकोणेन चिन्तयितुम् उद्बुद्धवान्। अधिकांतर सक्रियता तथा दत्तांशस्य प्रभावी प्रयोगस्य आह्वानं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् दत्तांशः राष्ट्रिय सम्पत्तिः, भविष्यस्य संसाधनं च अस्ति। सः देशस्य रक्षा उद्यमं सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषयेऽपि अवधानं प्रदत्तवान्। तथा च वैश्विकस्तरे अधिक प्रतिस्पर्धात्मकं कार्यं च कर्तुं प्रैरयत्। सभायां सचिवाः क्षेत्रीय प्राथमिकतासु, उदयोन्मुख प्रतिसन्धिषु, कार्यान्वयन विषयेषु च स्वानुभवान् विनिमयी कृतवन्तः। मन्त्रिपरिषदीय सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां विभागानां च सचिवाः, प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः आसन्। भारतस्य आधिकारिकयात्रायाम् आगतः जापानदेशस्य रक्षामन्त्री सिन्जिरो कुइजुमी ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवान्। भारत जापानदेशयोः

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम

बनारस, इधर कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि क्या आज हमने संस्कारों की जगह बहानों को पालना शुरू कर दिया है। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो हम कहते हैं कि आजकल का जमाना ही ऐसा है, या दोस्तों का असर है, या उम्र ही ऐसी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर गलती के पीछे कोई बहाना होना जरूरी है, और क्या ये बहाने बना देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सच तो ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें अपने व्यवहार से सिखाते हैं। संस्कार बस उपदेशों से नहीं आते, वे घर के वातावरण से जन्म लेते हैं। बच्चा देखता है कि माता पिता बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सच और झूठ के बीच कौन सा रास्ता चुनते हैं और अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करते हैं

या उसके लिए कोई नया बहाना खोज लेते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। लेकिन आज समस्या ये है कि हम बच्चों से सच की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए कई बार उन्हें झूठ का रास्ता दिखा देते हैं। हम कहते हैं कि घर पे मेहमान आए हैं, कह दो पापा घर पर नहीं है। अब बच्चा उस वक्त बस एक बात नहीं सीखता, वो यह भी सीखता है कि सुविधा के लिए झूठ बोला जा सकता है। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए महंगे मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। आपको समझना होगा कि बच्चे की हर मांग पूरी कर देना ही प्रेम नहीं है, बल्कि कई बार सही समय पर ना कहना भी संस्कार होता है। कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, यानी विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से पात्रता आती है। आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें विनम्र बनना भी सिखा रहे हैं? आज परिवारों में संवाद का धागा कमजोर हो रहा है। बच्चे अपनी दुनिया में हैं और बड़े अपनी व्यस्तताओं में। संवाद टूटता है तो दूरियां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं तो शिकायतें जन्म लेती हैं, और शिकायतें बढ़ती हैं तो हम दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं। इसलिए जरूरत पहले अपने घर के वातावरण को बदलने की है। उन्हें भाषण कम, उदाहरण ज्यादा चाहिए। उन्हें डर कम, संवाद ज्यादा चाहिए। उन्हें बस सुविधाएं नहीं, बल्कि उन सुविधाओं के साथ जिम्मेदारी भी चाहिए। याद रखिए बनारस, बच्चों का बिगड़ना अचानक नहीं होता। ये छोटी छोटी अनदेखियों, लगातार दिए गए बहानों और कमजोर होते संवादों से धीरे धीरे शुरू होता है। आज सवाल बच्चों से नहीं, हम बड़ों से है कि क्या हम हर गलती के लिए बहाने ही बनाते रहेंगे या अपनी जिम्मेदारी स्वीकार भी करेंगे? क्या हम संस्कारों को फिर से अपने घर की पहली प्राथमिकता बनाएंगे? क्योंकि जिस दिन बहाने संस्कारों से बड़े हो जाते हैं, उस दिन बस बच्चे नहीं हारते, बल्कि बड़ों की परवरिश भी हारने लगती है। तो आखिरकार सवाल यही है कि क्या हम संभलेंगे या हारते ही रहेंगे और अपनी गलतियों को टालते ही रहेंगे? बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सोचिएगा जरूर।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। बनारस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प किया हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का होगा। तो ये युवा किस तरह इस विजन में अपना योगदान दे सकते हैं और इसमें भाग लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के विशेष अतिथि मनोज गुप्ता। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं।
1: नमस्कार साथियों, मैं मनोज गुप्ता, अध्यक्ष स्वच्छता संसद वाराणसी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 में भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन तैयार किया गया है, जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसी उद्देश्य से स्वच्छता संसद युवा संवाद के माध्यम से विकसित भारत के नवनिर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में एक संगोष्ठी का आयोजन करके युवाओं से संवाद करके उनसे सुझाव ले रहे हैं कि हमारा राष्ट्र विकसित कैसे हो। उन युवाओं के आइडियाज़, उनके सुझाव हमारे राष्ट्र के विकास में बड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी उद्देश्य

0: को लेकर हम एक जागरूकता मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है युवा संवाद, और युवाओं की बढ़ती भागीदारी और अच्छे जो सुझाव आ रहे हैं उसे देखकर ये लगता है कि युवा की भी इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो विजन है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उस संकल्प को पूरा करने के लिए युवा बहुत उत्साहित हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं। वाराणसी के ये युवा जो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं अपने विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और जो अच्छे सुझाव दे रहे हैं युवा उनको पुरस्कृत भी स्वच्छता संसद द्वारा किया जाएगा। ऐसे में युवाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है, और आने वाले दिनों में युवा ही राष्ट्र के भविष्य हैं, इसलिए उनकी भागीदारी जरूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे मनोज गुप्ता को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस आइए, अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे और जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। बनारस, आपको बता दें कि मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए ऋणी किसानों को आवेदन का अंतिम समय 31 अगस्त तक दिया है। बीमा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी करेगी। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का बीमा कराया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब निर्माण, मत्स्य अंगुलिका और मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता योजना के लिए 24 अगस्त तक आवेदन होंगे। इच्छुक आवेदक पोर्टल fisheries.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बनारस, आधुनिक समाज में जब मानवीय मूल्य, सामाजिक समरसता और नैतिक आदर्श कमजोर हो रहे हैं, ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से विभिन्न वर्गों, विचारों और संस्कृतियों के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित किया। ये सार है तुलसी जयंती समारोह में वक्ताओं के कथन का, और आयोजन था तुलसी घाट पर गुरुवार। सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने मानस की रचना से लोक मंगल और लोक कल्याण किया है। साथ ही साथ BHU के दृश्य कला संकाय में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी में 3 व्याख्यान हुए। प्रख्यात फोटोग्राफर अमिताभ अग्रवाल ने विद्यार्थियों को फोटोग्राफी की बारीकियां बताते हुए कहा कि आज आधुनिक तकनीकों और AI का दौर है, मगर फोटोग्राफी का मूल तत्व आज भी जरूरी है। 21 अगस्त तक चलने वाली प्रदर्शनी में गुरुवार को अमिताभ अग्रवाल ने विद्यार्थियों को फ्रेम, कंपोजिशन, प्रकाश, दृष्टिकोण, क्षण, मूवमेंट और विजुअल बैलेंस जैसे पहलू समझाए। साथ ही नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि जिंदगी के गमों की कहानी को अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने और कहने का नाम ही फोटोग्राफी है। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित पंडित ओमकार नाथ ठाकुर सभागार में गुरुवार को केंद्रीय विद्यालय संगठन के वाराणसी संभाग की ओर से 2 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि कहीं भी केंद्रीय विद्यालय में जाने पर हम भारत में हैं का भाव मन में आता है। कुलपति ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों और IIT में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के विद्यालयों के बीच पेयरिंग कर एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और कला के प्रति परिचय, सम्मान और स्नेह विकसित करना इस पहल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बनारस, आपको बता दें कि जापान में यामानाशी प्रीफेक्चर राज्य के गवर्नर कोतारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सदस्य 22 अगस्त को अपने शहर बनारस आ रहे हैं। वे लखनऊ से सड़क मार्ग से दोपहर करीब 1:30 बजे सीधे सारनाथ पहुंचेंगे, जहां उत्खनन स्थल, परिसर, धम्मेख स्तूप, संग्रहालय, चौखंडी स्तूप आदि बुद्ध से जुड़े स्थलों का भ्रमण करेंगे, और साथ ही साथ उन्हें राज्य सरकार की ओर से डिनर भी दिया जाएगा। बनारस गंगा का जलस्तर गुरुवार को दिनभर स्थिर रहा, लेकिन रात 8 बजे से फिर से बढ़ाव शुरू हो गया है। जी हां, वृद्धि की रफ्तार 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा रही। बाढ़ का वरुणा में पलट प्रवाह होने से आबादी तक पानी पहुंचने लगा है। कई क्षेत्रों के लोग प्रभावित होने की आशंका में परेशान हैं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और डीएम सत्येंद्र कुमार ने गुरुवार को बोर्ड से गंगा और वरुणा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दोनों अधिकारी

0: उन्हें प्रभावित आबादी, जलस्तर और विभागीय तैयारियों की स्थिति भी देखी। तो बनारस ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।

जी हाँ, बनारस काशी कथा। बनारस आज है शहनाई के शहनशाह भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का यौम वफात, और आज के दिन काशी कथा का इससे अच्छा विषय भला और क्या ही हो सकता है। बनारस कभी कभी कोई कलाकार केवल संगीत नहीं रचता, वो अपने समय, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति की आवाज बन जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे ही कलाकार थे। उनकी शहनाई में सिर्फ सुर नहीं थे, उसमें बनारस की गलियां थीं, गंगा की लहरें थीं, मंदिरों की घंटियां थीं और भारत की उस साझी संस्कृति की धड़कन थी जिसमें धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी आत्मा एक होती है। कमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक संगीत साधक परिवार में हुआ था। बचपन में ही वे बनारस आ गए और यहीं उनकी संगीत साधना ने अपना वास्तविक रूप पाया। उन्होंने अपने मामा उस्ताद अली बख्श से शहनाई की शिक्षा ली। गंगा के किनारे बालाजी के मंदिर में घंटों रियाज करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके लिए संगीत किसी मंच पर प्रदर्शन करने की चीज नहीं बल्कि साधना थी, एक ऐसी साधना जिसमें कलाकार खुद को सुरों के हवाले कर देता है। एक समय था जब शहनाई को विवाह और मांगलिक अवसरों का वाद्य माना जाता था। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को मंदिरों और विवाह मंडपों से निकालकर शास्त्रीय संगीत के बड़े मंचों तक पहुंचाया। उनकी उंगलियों से निकलने वाला हर सुर जैसे शहनाई को एक नई प्रतिष्ठा देता गया। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का वह ऐतिहासिक दिन जब लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संबोधन के बाद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ने स्वतंत्र भारत की पहली सुबह को अपने सुर दिए। राग काफी की वह धुन आज भी हमारी राष्ट्रीय स्मृति में बसी हुई है। लेकिन बनारस बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी पहचान उनका जीवन दर्शन था। वे मुस्लिम थे लेकिन बालाजी के उपासक थे। उनके लिए अल्लाह और ईश्वर विरोधी नहीं बल्कि संगीत की आध्यात्मिक दुनिया के दो नाम थे, और यही कारण है कि उनकी शहनाई भारत की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बन गई। बिस्मिल्लाह खां को दुनिया के अनेक देशों से बड़े बड़े प्रस्ताव मिले लेकिन बनारस छोड़ना उनके लिए संभव नहीं था। कहा जाता है कि जब एक विदेशी विश्वविद्यालय ने उन्हें विदेश में ही बसने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ गंगा को भी ले जा सकते हैं। इस एक वाक्य में खां साहब के पूरे जीवन का दर्शन समाया हुआ है। उनके लिए बनारस बस रहने की एक जगह नहीं था, वह उनकी सांसों में बसा हुआ था। भारत सरकार ने उनकी साधना को पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया और वर्ष 2001 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 21 अगस्त 2006 को जब बिस्मिल्लाह खां साहब इस दुनिया से विदा हुए तो ऐसा लगा कि जैसे बनारस की किसी गली से शहनाई का एक अमर स्वर अचानक थम गया हो। लेकिन महान कलाकार कभी पूरी तरह विदा नहीं होते, वे अपने सुरों में, अपनी यादों में और अपनी संस्कृति में जीवित रहते हैं। आज जब हम बिस्मिल्लाह खां को याद करते हैं तो केवल एक महान शहनाई वादक को याद नहीं करते, हम उस भारत को याद करते हैं जहां गंगा के किनारे एक मुस्लिम कलाकार बालाजी की आराधना में सुर साधता था, जहां संगीत धर्म की दीवारों को पार कर इंसान को इंसान से जोड़ता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई आज भी हमें यही संदेश देती है कि सुरों की कोई जाति नहीं होती, संगीत का कोई मजहब नहीं होता और सच्ची कला का कोई सरहद नहीं होता। आज उनके यौमे वफात पर हम उन्हें अपनी खिराज-ए-अकीदत पेश करते हैं।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
2: अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
6: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी करेंगे। एक रिपोर्ट।
7: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे।

0: समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समाज कल्याण विभाग के कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसायटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल प्रदेश दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक उद्यमी और अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निवेश, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, MSME और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक संवाद होगा। राज्य सरकार की तरफ से विश्वास व्यक्त किया गया है कि यह संवाद परक सम्मेलन जापान के साथ साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन को नई ऊंचाई देगा। समाचार कक्ष से रितेश।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री मिश्र ने बताया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने में अतिरिक्त 2 महीने लगेंगे।
5: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम

0: राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वनगमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
1: गोरखपुर के बाघागाड़ा के पास वाराणसी हाईवे पर ट्रॉलर और रोडवेज बस की टक्कर में वाराणसी के रहने वाले बस चालक की मौत हो गई। कल देर रात हुए इस हादसे में 14 यात्रियों के घायल होने की

हादसे में 14 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली तथा घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिए। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गयी। बारिश के चलते चित्रकूट में कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। जिला प्रशासन ने यहां आज भी कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, आज है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां की पुण्यतिथि। आज इस मौके पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उनके द्वारा शहनाई पर प्रस्तुत राग ललित।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन। कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी। इराक था ललित। श्रोताओं, आज उनकी पुण्यतिथि पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई के इन सुरों के साथ हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के मीटर पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर खबरनामा, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए।

0: बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि ये निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें

0: कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में दरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदले की राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे। वैश्विक शहर

0: के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है। सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स थर्ड हाई लेवल मीटिंग विद सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्जेस टू ब्रेक साइलोस एंड अडॉप्ट लॉन्ग टर्म विजन फॉर कंट्रीज फ्यूचर। Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. U.S. imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring

0: in the pre-quarterfinals, 21-23, 21-19, 21-17, in a nail-biting encounter. In the women's doubles, the Indian pair of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand will face fourth seeds Jia Yifan and Zhang Huying of China. The pair defeated seventh seeds Ring Iwanaga and Kei Nakashiki of Japan in straight games 21-16, 21-12 in the pre-quarterfinals. Astronomers have discovered an unusually dense giant exoplanet orbiting a star far beyond our solar system that challenges current theories of how planets were formed. The planet, named GJ523b, is about 150 million years old. It is more than 2.5 times wider and the radius roughly 2.55 times that of Earth. But it has an extraordinary mass, about 23 times the mass of Earth, while remaining predominantly rocky. The planet has been informally dubbed as Mega Earth, a rare category of exceptionally massive and dense rocky worlds. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Pramod. Amit Shah slams Congress Working Committee's decision on two stanza Vande Mataram, reports Indian Express. Shah targets Congress on Vande Mataram, headlines the Pioneer. Almost all newspapers carry the story of former MP Sajjan Kumar passing away at a city hospital. The Hindustan Times says 42 years after anti-Sikh riots, Sajjan Kumar dies serving life term. And finally, a story in the Tribune says that Gandhi's 688 handwritten notes to freedom fighter Anand Hingorani has fetched a record 16.2 crores in action. And with that, it's back to you, Pramod.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to say...
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निजाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसा फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने ईरान की हुकूमत के साथ हिजबुल्ला के राबतों का हवाला देते हुए मस्कूरा तंजीम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रिहायशगाह पर मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल के इकदाम के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उमूर खारजा और गवर्नेंस शामिल हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरियों से जोर देकर कहा कि वो इस बारे में तवील मुद्दती नुक्ता नजर के साथ गौर खोज करें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: डेटा के मौसर इस्तेमाल और बेहतर हमांगी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि डेटा एक कौमी असासा और मुस्तकबिल का वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रुकावटें सिर्फ एक तंजीमी मसला नहीं है बल्कि ये सोच का भी मसला है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अपने पन के जज्बे के साथ काम करें। अफसरान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत और टीम स्प्रिट की तामीर की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने पॉलिसी साजी में ताज़ा तरीन ख्यालात लाने के लिए सरकारी शोबों, यूनिवर्सिटियों और नौजवानों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा रबतों पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की दिफाई सनअत को मजीद मजबूत बनाने और इसे आलमी सतह पर मजीद मुसाबकती बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। کووڈ 19 وبا اور مغربی ایشیا کے بحران کے تجربات کی مثالیں دیتے ہوئے

0: उन्होंने कहा कि इस तरह की हमाहंगी के तरीक़ेकार को हुकूमत के कामकाज के कल्चर का एक कुदरती हिस्सा बनना चाहिए। जनाब मोदी ने इंसानी मुदाखलत को यकीनी बनाते हुए मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल और इंसानी महारत के साथ AI की सलाहियतों को जोड़ने के नए तरीके तलाश करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पेचीदा चैलेंजों से निपटने और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र के साथ भारत के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुकम्मल हुकूमत के नुक्ते नज़र, बेहतर हमाहंगी, जदीद सोच और इज्तिमाई मिल्कियत की ज़रूरत का इआदा करते हुए अपनी बात ख़त्म की। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरियों ने शोबा जाती तरजीहात, उभरते हुए चैलेंजों और अमल दरामद के मसाइल पर अपने तजुर्बात शेयर किए। काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और महकमों के सेक्रेटरीज और वज़ीर आज़म के दफ्तर के सीनियर हुकाम ने इस मीटिंग में शिरकत की। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट की जानिब से मुरतब किए गए कानून की खुली खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और ये मुल्क मुखालिफ है। जनाब अमित शाह ने दावा किया कि 1937 में कांग्रेस ने खुशनूदी हासिल करने की खातिर वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर मरकजी सरकार ने इस तारीखी गलती की इसलाह करते हुए पूरे कौमी गीत को कानूनी एतबार से तस्लीम शुदा हैसियत दी। जनाब अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की क्यादत में कांग्रेस पार्टी फिर से वोट बैंक सियासत के लिए खुशनूदी हासिल करने के रास्ते पर चल रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के रुकन पार्लियामेंट राजू बिस्ता और सियाहत के वजीर शंकर घोष और दीगर ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जनाब अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर पर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, दो मीटिंगों में भी शरीक होंगे। दोपहर में वजीर दाखिला कवाखाली ग्राउंड पर भारतीय न्याय संहिता पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी और दीगर रियासती वुजरा उनके हमराह होंगे। इस नुमाइश में नए फौजदारी कानून के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगी। शाम में जनाब अमित शाह पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। पहाड़ी इलाकों और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर कल दो जायजा मीटिंगें भी होंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत आज पुणे में मवासलात के वज़रा की 12वीं ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें ब्रिक्स रुक ममालिक के मवासलात के वज़रा और सीनियर नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल तब्दीली, इख्तरा और पायदार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल करेंगे। मीटिंग का मौजू है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए इख्तरा, इश्तराक और तब्दीली। वहीं भारत की ब्रिक्स की सदारत में 2026 के तहत आज जयपुर में सियाहत के वज़रा की ब्रिक्स मीटिंग का आगाज होगा। ब्रिक्स रुकन ममालिक से सियाहत के वज़रा और सीनियर अहदेदारान इस 2 रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में जिन अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें पायदार और जिम्मेदार सियाहत, हुनरमंदी के फरोग, बिना रुकावट सफर और सियाहत में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। NTA का आंसर की चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन अमल है जहां जेईई मेन और नीट या यूजीसी नेट जैसे इम्तिहान में

बैठने वाले उम्मीदवार उबूरी आंसर की में गलतियों पर एतराजात दाखिल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एनटीए ने कहा कि अगर एक उम्मीदवार भी किसी सवाल को चैलेंज करता है तो मुतालिका माहिरीन उस चैलेंज को कबूल करते हैं और नजरसानीशुदा आंसर की का इतलाक इम्तिहान देने वाले हर उम्मीदवार पर होता है। उसने कहा कि गैर संजीदा चैलेंजों की हौसला शिकनी की खातिर जवाब को चैलेंज करने के लिए फीस ली जाती है और चैलेंज के दुरुस्त पाए जाने पर यह फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपए की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए जाने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए यह फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैन तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफर करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निजाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदार इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने गुज़श्ता 4 दिन में 2 बहरी जहाजों को अगवा किया है। इन वाकयात से इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नजदीक समंदर में कज़ाकी के वाकयात में फिर से तेजी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नजदीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 एहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मवासलाती और सटेलाइट साजो सामान के साथ मोगदीशु में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। अमले के एहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का 1 शहरी, जॉर्जिया का 1 और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जेली हिमालयी मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। करेलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुज़ा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नजदीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा मधुरता से भरे इस कार्यक्रम मधुरिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बारिश का मौसम है और आजकल बारिश खूब अच्छी हो भी रही है, और ऐसे में बरसात के प्यारे प्यारे गीतों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी

यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितनी फिल्में बनी होंगी जिसमें बारिश के दृश्य या गाने फिल्माए गए होंगे, लेकिन 1955 में आई फिल्म श्री 420 की बात ही कुछ और है। वैसे तो फिल्म श्री 420 कई कारणों से याद की जाती है, लेकिन फिल्म में राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया ये गीत इतने सजीव तरीके से पेश किया गया कि इसकी याद दर्शकों के दिल में आज भी ताज़ा तरीन है।

मुंबई के मरीन ड्राइव के खूबसूरत बैकड्रॉप पर फिल्माया ये गीत इतना प्यारा है कि इसे सुनते हुए यदि आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो यकीन मानिए मॉनसून का इससे अच्छा लुत्फ आप कहीं और नहीं उठा सकते। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया फिल्म मंजिल के इस गाने की खासियत ये है कि इसे न सिर्फ बारिश में बल्कि हर मौसम में याद किया जाता है। गाने को अपनी आवाज़ से संवारा है किशोर कुमार ने, बोल हैं योगेश के और इसे कंपोज किया है पंचम दाने।

अगला गीत जो हमने चुना है वो एक बहुत ही नर्म और नाजुक सा गीत है, बरखा रानी से जुड़ा हुआ। बारिश की रस भरी फुहार किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करती है, उसी का वर्णन है इस गीत में, जिसे हमने चुना है फिल्म परख से। शैलेंद्र का लिखा ये लोकप्रिय गीत लता जी की मधुरतम आवाज़ में है और सलिलदा के संगीत का तो कहना ही क्या। परख फिल्म का ये गीत जिस राग इस गीत में जिस राग को आधार बनाया गया है वो है खमाज। तो आइए अब सुना जाए शैलेंद्र साहब, सलिलदा और लता जी का ये मास्टरपीस।

चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। 1981 में आई फिल्म प्यासा सावन सुरेश वाडेकर की गायन प्रतिभा का सबसे बेहतर प्रमाण है। उनका गाया ये गीत जितेंद्र और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया।

लता मंगेशकर ने भी इस गीत में अपनी आवाज दी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत लिखा है संतोष आनंद ने। तो आइए सुनते हैं बादलों से बरसने की गुजारिश करता ये गीत।

बरखा बहार के ऐसे और भी बहुत से गीत हैं जो लंबे अरसे से फिल्म प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छाए हैं। ऐसे गीत आगे भी लिखे और रचे जाते रहेंगे। आखिर प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए इससे प्यारा कोई और बहाना जो नहीं है। सो प्रेम और उल्लास के

इस बारिश रूपी उत्सव में भींगते रहें और भिगोते भी रहें, और इसके साथ ही आसमान से बरस रही इन नेमतों के लिए ऊपर वाले को शुक्रिया कहना ना भूलें। और अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए अनुमति।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मरकूब हुसैन का।
1: अमरोहा में जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभागवार जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा,
2: मासिक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के संबंध में यहाँ पर जो कुछ बताया है वो संतोषजनक है और दिन पर दिन कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, कप्तान साहब के नेतृत्व में यहाँ शांति व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उस तरीके से हमारे अधिकारी सब कार्य में लगे हुए।
1: उन्होंने कहा कि अलंकार योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ उनके परिवार जनों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा कलेक्ट्रेट में जबकि पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का गायन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर गौड़ ने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है, तभी हमारा देश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकेगा और आगे बढ़कर विकसित भारत बन सकेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के उपरांत सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों को राष्ट्र की सुरक्षा एवं अखंडता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तार के अंतर्गत अमरोहा के मंगरौला से हरिद्वार तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की राह अब आसान हो गई है। इसके दायरे में आने वाले अमरोहा के किसानों की सर्किल रेट बढ़ाने की मांग मान ली गई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण और हरिद्वार तक इसके विस्तार को गति देने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन ने जमीनों के नए सर्किल रेट निर्धारित कर दिए हैं। यह एक्सप्रेसवे जिले के 52 गांवों से होकर गुजरेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि इन गांवों के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मुआवजे की मांग को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों में सर्किल रेट में सर्वाधिक 48% तक की वृद्धि की गई है।
3: जो सर्किल रेट रिवाइज की गई है इसका सीधा सीधा लाभ 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को पहुंचेगा। इसमें जो ब्रॉड प्रिंसिपल अपनाए गए हैं वो ये कि स्टैंप एक्ट का इसमें पालन हो, सुसंगत जीओस का पालन हो और इसके अलावा एक गाँव के पास अगर दूसरा गांव लगता है उनमें जो सर्कुलेट में विषमता है उसको काटा जाए।
1: इस अहम फैसले से न सिर्फ किसानों को

0: उनकी जमीन का बाजार के अनुरूप उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली अड़चने भी दूर होंगी। केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के प्रचार प्रसार के लिए अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में 12 अगस्त को पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने की। सम्मेलन में VBG रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और गाँव में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि VBG रामजी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा पात्र श्रमिकों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 10 अगस्त को अमरोहा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिव्यांगजन विभाग, सेवायोजन कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन विकास भवन में किया गया। मेले में कुल 8 कंपनियों द्वारा 89 उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 56 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी व हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में कुंभ मेले की तर्ज पर पेंटून पुल की संभावनाओं को लेकर DM अमरोहा डॉक्टर नितिन गौड़ और DM हापुड़ कविता मीणा ने तकनीकी टीम के साथ 17 अगस्त को तिगरी में मंथन किया।
1: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
2: गौतम बुद्ध नगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने पौधारोपण करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरा भरा पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह आजादी हमें असंख्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उन महान वीरों के बलिदान को स्मरण करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का दिन है। वहीं जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने झंडा फहराकर जिला मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने व बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर लोक निर्माण राज्य व प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी विभाग तैयारियों के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने विशेष रूप से तीनों प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंडिया बायो एनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। एक्सपो में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने हिस्सा लिया। एक्सपो में देश विदेश से आए प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि CBG इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है।
3: इस सेक्टर में कितनी ताकत है हमारे किसानों को समृद्ध बनाने की, इसमें कितनी ताकत है हमारे गोपालकों को, पशुपालकों को समृद्ध बनाने की। खेती करने वाले किसान को तो समृद्ध बनाना ही है, उसका कचरा जो निकल जा रहा है उस कचरे का को कंचन बनाते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोल्ड बनाते हुए, हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और किसान की आमदनी को तो हम बेहतर बनाएंगे। साथ में एनवायरमेंट का भी फायदा होगा, साथ में हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उनको नौकरी का अवसर मिलेगा।
2: वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है।
4: उत्तर प्रदेश के पास ये अकूत संसाधन जिनका सदुपयोग करके हम कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सके, बायो एनर्जी और आपके इस टेक एक्सपो के माध्यम से। अभी तक हमारे पास समस्या थी पराली जलाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सबके आगमन ने हमें उसके उपयोग की संभावनाओं को खड़ा कर दिया है।
2: सीबीएसई

0: नॉर्थ जोन वन लॉन टेनिस एवं शूटिंग बालिका वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन जेपी पब्लिक स्कूल गटनोरा में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी सहित 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
1: फिट इंडिया मूवमेंट का भी आह्वान कर देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास आधार करें। देश पदक जीत रहा, खेलों में आगे बढ़ रहा, युवाओं को खेल के प्रति जुड़ाव हो रहा, और उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान किया, बड़ा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम बहुत तेजी के साथ देश में प्रारंभ हो।
0: उत्तर प्रदेश की सृजनशील प्रतिभा नवाचारकर्ताओं, समाज सेवियों एवं परिवर्तन के वाहकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नमस्कार फाउंडेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में नमस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सृजनकर्ता सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रतिभा, नवाचार और युवा शक्ति का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। ऐसे सम्मान समारोह युवाओं की सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आपने सुनी अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना राजगढ़, जिला मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार अमरजीत पाल, पिता का नाम बबुंदर पाल, निवासी ग्राम ददरा भैंसा खास, पोस्ट राजगढ़, थाना राजगढ़, मड़िहान, जिला मिर्जापुर, ये दिनांक 3 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 3 इंच, इकहरा मजबूत जिस्म, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। लापता होने के समय ये सफ़ेद टी शर्ट और काला लोअर पहने थे। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। अहरौरा, जिला मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार आरुषि चौहान, पिता का नाम रविंद्र चौहान, निवासी ग्राम जुड़ुई, थाना अहरौरा, मिर्जापुर, ये दिनांक 11 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 26 वर्ष, कद 5 फीट, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें पीले रंग के सूट सलवार में देखा गया था। आरुषि चौहान के बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। थाना कछुआ, जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ननका, पति का नाम मनीष वनवासी, निवासी थाना कछुआ, जनपद मिर्जापुर, ये दिनांक 10 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 23 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, शरीर की बनावट सामान्य, रंग सांवला और चेहरा गोल है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला

है। लापता होने के समय ये गुलाबी रंग की साड़ी और पैरों में लाल रंग की सैंडल पहनी थी। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। थाना जिकना जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवानी, पिता का नाम शेषमणि, निवासी ग्राम असवां, पोस्ट नीवी कहरवार, थाना जिगना जनपद मिर्जापुर। ये दिनांक 7 जुलाई सन 2026 दोपहर 11 बजे से लापता हैं। शिवानी का

इस दोपहर 11 बजे से लापता हैं। शिवानी का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 19 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, इकहरा बदन रंग सांवला और चेहरा गोल है। लापता होने के समय ये नीले रंग का जीन्स पैंट और कत्थई रंग का टॉप पहनी थी। शिवानी के बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव के मीटर पर। सुबह के 9:30 होने को हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

संदेश अपने साथ एक नई दुनिया, एक नया राज और एक नई आजमाइश लिए हमारे सामने आता है। तीन दरवेश अपनी अपनी दास्तानें सुना चुके थे, अब बारी थी चौथे दरवेश की। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, किस्सा हमारी बेसरो सामानी का अब सुनो, रुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो। किस वास्ते मैं आया हूँ यहाँ तक तबाह हो, सारा बयान करता हूँ उसका सबब सुनो।

ऐ मुर्शिदे मन, कभी मैं भी चीन के बादशाह का बेटा था, नाजो नेमत में पला, शहाना जिंदगी गुजारी और यही समझता रहा कि आसाइशें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। मेरे वालिद सख्त बीमार हुए, वफात से पहले उन्होंने मेरे चचा को बुलाया और वसीयत की, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, शहजादा अभी कमसिन है, जब तक वो सल्तनत संभालने के काबिल ना हो जाए तुम उसकी नियाबत करना, और जब वो बालिग हो जाए तो तख्त ताज उसे वापस कर देना। नेज़ मेरी ख्वाहिश है कि उसका निकाह तुम्हारी बेटी से कर दिया जाए। ये वसीयत करके बादशाह दुनिया से रुखसत हो गए और चौथे दरवेश के चचा तख्त नशीन हो गए। शहजादा यानी चौथा दरवेश उसको महल में ही रखा गया। एक वफादार खादिम मुबारक हमेशा उसके साथ रहता। वक्त गुजरता गया, एक दिन महल की गुलाम बादी ने शहजादे को थप्पड़ मार दिया। वो रोता बिलखता मुबारक के पास पहुंचा। मुबारक उसे उसके चचा के दरबार में ले गया और अर्ज किया, हुजूर, शहजादा अब जवान हो चुका है, उनकी शादी का भी वक्त आ पहुंचा है। चचा ने नजूमी बुलवाए और शादी की तारीख दरियाफ्त की। नजूमियों ने सितारे देखे और कहा, क़िबला आलम, ये साल नहस है, शादी अगले साल करना बेहतर होगा। लेकिन चंद ही दिन के बाद मुबारक का चेहरा जर्द हो गया और उसने शहजादे पर एक ख़तरनाक राज आया किया। शहजादे, तुम्हारे चचा ने तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दिया है। शहजादा ये सुनते ही हवास बाख्ता हो गया और घबरा कर बोला, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए दादा, तख्त नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा लो। मुबारक ने कहा, घबराओ नहीं, एक तदबीर मेरे जहन में आई है, शायद खुदा तुम्हें तुम्हारा हक भी वापस दिला दे। मुबारक उसे महल के एक पोशीदा हिस्से में ले गया, जहां फर्श के नीचे एक तहखाना था। वहां सोने के घड़े, अशफियां और कीमती जवाहरात मौजूद थे। हर घड़े पर जवाहरात से बना एक बंदर रखा हुआ था। शहजादे ने तजस्सुस से पूछा, दादा ये सब क्या राज है? मुबारक ने जवाब दिया, ये तुम्हारे वालिद का राज है बेटा, उनके पास 39 तिलिस्मी बंदर जमा थे, सिर्फ एक की कमी रह गई थी, जब 40

बीसों बंदर मुकम्मल होंगे तो उनकी असल ताकत जाहिर होगी। तो शहजादे ने इस पर कहा, तो अब क्या किया जाए? फिर मुबारक ने कहा, हम मलिक सादिक के पास जाएंगे, शायद वो 40वां बंदर दे दे और तुम्हारी मदद करे।

मुबारक ने बड़ी तदबीर के साथ उसके चचा से कहा कि वो उसे जंगल ले जाकर कत्ल कर देगा, जिससे उसके दामन पर कोई छींटाकशी भी नहीं होगी और चचा के रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा। ये सुनते ही चचा बेहद खुश हो गया और मुबारक से बोला, जल्द इस तदबीर को अमल में ले आओ। और यूं वो दोनों सफर पर रवाना हो गए। वो सफर जिसको शहजादे की मौत का सफर समझा जा रहा था, वो उसकी नई जिंदगी का आगाज बन गया। दोनों रातों रात निकल गए। कई हफ्तों के सफर के बाद मुबारक ने शहजादे की आंखों में सुलेमानी सुरमा लगाया, जिसके लगाते ही अचानक एक ऐसी दुनिया उसके सामने आ गई जहां जिनों के लश्कर और शाही खेमे सब उसे नजर आने लगे। फिर दोनों मलिक सादिक के दरबार में पहुंचे। मलिक सादिक जो जिनों का बादशाह था, जहां पहुंचकर मुबारक ने कहा, हुजूर, ये वही शहजादा है जिसके वालिद से आपकी देरीना दोस्ती थी। उसके चचा ने उसका हक छीन लिया है, अब आप ही कुछ मदद फरमाएं। मलिक सादिक ने कहा, तुम्हारे वालिद के हम पर बहुत हुकूक हैं, लेकिन पहले शहजादे को एक इम्तिहान देना होगा। ये कहकर उसने एक कागज़ शहजादे के हाथ में दिया, जिस पर एक नहायत हसीन औरत की तस्वीर थी। उस तस्वीर वाली औरत को दुनिया के किसी भी कोने से तलाश करके मेरे पास लाओ, अगर कामयाब हुए तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मलिक सादिक ने शहजादे से ये बात कही। फिर उस तस्वीर को लेकर मुबारक और शहजादा दोनों 7 बरस तक शहर शहर, मुल्क मुल्क, बस्ती बस्ती भटकते रहे।

तो छत फट गई। एक मुरस्सा तख्त नमूदार हुआ, उस पर एक हसीन नौजवान बैठा था। उसके साथ कई और लोग भी थे, वो सब मेरे शौहर की तरफ बढ़े। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे मगर पांव बकरियों जैसे। तब से हम दोनों इस उजड़े मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं करता बेटा। ये सुनकर शहजादे ने कहा, बाबा आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, जो मेरी किस्मत में होगा वो होकर रहेगा। पीर मर्द ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर शहजादे ने बड़ी आजिजी से कहा, महबूब का विसाल ही मेरी जिंदगी है, मैं मरने जीने की परवाह नहीं करता।

ये आप लोगों के कदमों की बरकत है। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बेटे को दिखाऊं। दरवेशों ने एक साथ कहा, बिस्मिल्लाह। बादशाह ने शहजादे को गोद में उठाया। महल में जश्न का आलम हो गया। चारों तरफ जश्न शुरू हो गया। लेकिन तभी महल की एक खवास चीखती चिल्लाती आई और बोली, हुजूर कयामत हो गई, शहजादा गायब हो गया। जब दाई ने शहजादे को नहला धुला कर गोद में लिया, एक बादल का टुकड़ा आया और उसने घेर लिया और दाई वहीं बेहोश हो गई और शहजादा गायब हो गया। पूरे मुल्क में कोहराम मच गया। मगर दो दिन बाद वही बादल वापस आया और एक जड़ाऊ पिंगोला यानी झूला महल में रखकर गायब हो गया। उसमें शहजादा सही सलामत मौजूद था। ये सिलसिला हर महीने जारी रहता। बादल आता, शहजादे को ले जाता और दो दिन बाद वापस ले आता। इस तरह से 7 बरस गुजर गए। एक दिन आजाद बख्त ने दरवेशों से कहा, ये राज मेरी समझ से बाहर है, आखिर मेरे शहजादे को कौन ले जाता है? दरवेशों ने मशवरा दिया, एक रुक्का शहजादे के गहवारे में रख दीजिए और उस नामालूम मोहसिन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कीजिए। बादशाह ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली मर्तबा शहजादे के साथ एक जवाब आया, हमें भी अपना मुश्ताक जानिए, आपके लिए सवारी का तख्त भेजा जाएगा, तशरीफ लाइए, मुलाकात होगी। आजाद बख्त चारों दरवेशों को साथ लेकर रवाना हो गया। हवा में उड़ता हुआ तख्त एक अजीम शान मकाम पर उतरा। अचानक उनकी आंखों में सुलेमानी सुरमा लगाया गया और सामने एक ऐसी दुनिया नमुदार हुई जो इंसानों ने कभी न देखी थी। हजारों परीजाद इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सामने जमुर्द का तख्त था जिस पर मलिक शहपाल जलवा फरोज था। उसने आजाद बख्त को देखा तो आगे बढ़कर गर्मजोशी से गले लगाया और कहा, ए दोस्त, ये चारों दरवेश आपके साथ कैसे आए? आजाद बख्त ने जवाब दिया, इन बेनवाओं ने बड़ी मुसीबतें झेली, अगर आपकी इनायत से उनकी मुराद पूरी हो जाए तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मलिक शहपाल ने कहा, बसर व चश्म, मैं आपकी फरमाइश से इनकार नहीं कर सकता। मलिक शहपाल ने तमाम जिनों और परियों को हुक्म दिया कि दुनिया में मौजूद आदमजाद औरतों और मर्दों को तलाश करके उसके दरबार में हाजिर किया जाए। फिर उसने एक राज बताया, ये शहजादा बख्तियार मेरे पास इसलिए है कि मैंने अहद किया था कि मेरी औलाद का रिश्ता किसी इंसानी बादशाह के फर्जंद से होगी। जब ये पैदा हुआ तो मैं उसे अपने पास ले आया, लेकिन मैं जानता था कि उसके वालिदैन उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे हर माह चंद दिन अपने पास रखकर वापस भेज देता हूँ। आजाद बख्त ने यह सुनकर बेहद खुश लहजे में कहा, अब मेरे दिल से तमाम अंदेशे दूर हो गए, आप जिसमें उसकी भलाई समझें कीजिए। मलिक शहपाल ने जिनों के सरदारों को हुक्म दिया कि उन तमाम इंसानों को तलाश किया जाए जो मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तार या गुमशुदा थे। एक एक करके सब दरबार में पहुंचने लगे। मलिक सादिक के कब्जे से वो नाजनीन भी हाजिर की गई जिसकी तलाश में चीन का शहजादा 7 बरस भटकता रहा था। नीम रोज की शहजादी भी मिल गई। बहजाद खान भी हाजिर हुआ, मगर सुल्तान शाम की शहजादी का कोई सुराग न मिला। आखिर मालूम हुआ कि एक मगरूर जादूगर ने उसे कोहे काफ में कैद कर रखा था। मलिक शहपाल ने हुक्म दिया, अगर वो शहजादी को इज्जत से ले आए तो बेहतर, वरना उसका किला तहस नहस करके उसे गिरफ्तार कर लो। जादूगर गिरफ्तार हुआ और शहजादी भी बाजियाब हो गई। यूं बरसों से बिछड़े हुए सब अपने अपने प्यारों से मिल गए। फिर शादियों का सिलसिला शुरू हुआ और एक नेक साथ में शहजादा बख्तियार का अख्त मलिक शहपाल की बेटी रोशन अख्तर से कर दिया गया। ख्वाजा ज़ादा यमन यानी पहले दरवेश की शादी उसकी महबूब शहजादी से हो गई। फारस के शहजादे यानी दूसरे दरवेश का निकाह बसरा के शहजादी से कर दिया गया। अजम के बादशाहजादे यानी तीसरे दरवेश का निकाह फरंग की मलिका से कर दिया गया। नीम रोज की शहजादी बहजाद खान से निकाह में आई और चीन के शहजादे का निकाह उस पीर मर्द अजमी की बेटी से कर दिया गया जो मलिक सादिक के कब्जे में थी। यूं तवील मुसीबतों, जुदाइयों, आजमाइशों और खतरात के बाद चारों दरवेश और 5वां बादशाह आजाद बख्त अपनी अपनी मुराद को पहुंचे।

0: जिन्होंने कभी सोचा भी न था कि उनकी जिंदगी में खुशी का दिन आएगा, वो भी आखिरकार अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे। इलाही, जिस तरह तूने इन चारों दरवेशों और आज़ाद बख्त की मुरादें पूरी फरमाईं, इसी तरह हर बेकरार दिल की जायज़ आरज़ू को अपने कर्म फजल से पूरी फरमा। आमीन। ये थी दास्तान किस्से चार दरवेश, एक ऐसी दास्तान जहां आजमाइश तवील ज़रूर थी मगर उम्मीद ने आखिरकार हर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। इसी दुआ के साथ कि हम सब के दिलों का अंधेरा दूर हो जाए और हमारा खालिक उसे पुरनूर रोशनी से भर दे, अपनी मेज़बान शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। आदाब।
1: अभी समय समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम, ये आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडे। सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुनते हैं कांवर गीत।

अभी आप सुन रहे थे कांवर गीत, स्वर था अमलेश कुमार पांडे का। इन्हीं के स्वर में अब आइए सुनते हैं बनारसी कजरी।

0: अभी आप सुन रहे थे बनारसी कजरी, स्वर था अमलेश कुमार पांडे का। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981 यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराफत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना रात और दिन फिल्म से। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इससे पहले जो आप गीत सुन रहे थे वो था अमर प्रेम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी की रचना और संगीत आर डी बर्मन का।

चोरी चोरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। कार्यक्रम में अगला गीत आइए आपको सुनवाने जा रहे हैं सती सावित्री फिल्म से। भरत व्यास की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज़ एक बार फिर से आप सुनेंगे लता मंगेशकर की।

मेरा साया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खान का। लिखा ये गीत है और संगीत है मदन मोहन का।

शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत गीत है बेमिसाल फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

की आवाज़ में। रचना थी आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई थी राहुल देव परमन ने। कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गाइड, क्षमा कीजिएगा, दोस्ती फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ज्योति फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना और संगीत एस टी बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना लिबास फिल्म से, गुलजार की रचना थी और संगीत था आर डी बर्मन का। कार्यक्रम का आखिरी गीत आरती फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रोशन ने। आवाज़ आप सुनेंगे लता मंगेशकर की।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 कार्यक्रम का नंबर है, 7905519981। आज की फिल्में हैं हेलो ब्रदर, दूल्हे राजा, राजा हिंदुस्तानी, लव स्टोरी, बाबुल की गलियां और अपना बना लो। फिल्मों के नाम हेलो ब्रदर, दूल्हे राजा, राजा हिंदुस्तानी, लव स्टोरी और बाबुल की गलियां और अपना बना लो। व्हाट्सएप संदेश में सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक संदेश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के नाम लिखें और एक बारी संदेश भेजें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक संदेश भेजने, होता ही है कि शुरुआत के ही 4-6 मिनट में सैकड़ों की तादाद में संदेश आ जाते हैं और उन्हें शामिल करने का प्रयास हमारा रहता है। तो प्रोग्राम में शुरुआत में ही फिल्मों के नाम सुना करें और संदेश अपने भेज दें और फिर हमारे साथ बने रहें, प्रतीक्षा करें। बार बार संदेश न भेजें, जैसा कि कई बार हमने कहा है, जैसे ही आप बार बार संदेश लिखते हैं, चाहे आपने किसी भी फिल्म के लिए लिखा हो, आपका संदेश और पीछे होता चला जाता है। 7905519981 ये नंबर है और इस नंबर पर आए हैं आपके बहुत सारे संदेश आज की फिल्मों के लिए। जो फिल्में हैं हेलो ब्रदर, दूल्हे राजा, राजा हिंदुस्तानी, लव स्टोरी, बाबुल की गलियां और अपना बना लो। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आप ही की फरमाइश के इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, बाबुल सुप्रियो और जसपिंदर नरूला की आवाजें, फैज अनवार के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

हेलो ब्रदर फिल्म का गीत बाबुल सुप्रियो और जसविंदर नरूला की आवाज़ों में था और फरमाइशें आई हैं आप सबकी। ग्राम पजौनिया जालौन के हमारे श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक की फरमाइश पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आई है। जमानिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। आयनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद, बदरुद्दीन अंसारी, आप सभी हैं बजरडीहा धरहरा से। ये फरमाइश आई है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार और आयुष जंघेल की। गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं वीरेंद्र कुमार साहू और लोकेश्वर वर्मा। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह की फरमाइश पद्म टॉकीज नेपानगर से आई हुई है। बाटापारा से हमें सुन रहे हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान हैं फूले नगर अम्बीवली मुंबई महाराष्ट्र के श्रोता। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू का संदेश है। आशीष कुमार हमारे श्रोता हैं महरेव जौनपुर के। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी, गुरप्रीत तंगौरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर हैं तंगौरी मोहाली पंजाब से। राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी और कामेश यादव की फरमाइश सिंघाड़ तलाई खंडवा से आई हुई है। आप हैं नालाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जय लाम से, छिंदवाड़ा बरेड़ी से। राजेश खन्ना, विक्रम लोध, सुनीता राज खन्ना और भानु राज खन्ना हैं कोठा गोदाम, येलांडू जिला है ये। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी की फरमाइश चौखंटी बुलंदशहर से आई हुई है। जज्जर हरियाणा से हमें सुन रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। ये फरमाइश कमरिया जमशेदपुर से रोहन, आर्य, मुराहू और देवंती जायसवाल की। दिनारा से हैं प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सौरभ कुमार, अर्पित कुमार और हर्षित कुमार। लखनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमिष शिवम और सतीश। इसी गीत को सुनना चाहा मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून ने दुल्हापुर मुरादाबाद से। गहमर पकड़ी तर

हनुमान मंदिर चांदनी चौक के श्रोता हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल। चौरादा बार नावापारा अभ्यारण्य से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका और ज्योति ठाकुर। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। ये फरमाइश है गुरसुख सिंह, गुरजीत सिंह, नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत से आई हुई। दादरी गेट भिवानी से हैं कोमल मेहरा, कृष्ण मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद और हबीब अंसारी मखदूम नगर बजटिया वाराणसी से। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जांगले, आरती जोंगले और नांदेड़ महाराष्ट्र से आप सभी हैं। एक सा टाइटल लिखे हैं पूरे नाम में तो लगे कि कौन सा है। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी और उज्ज्वल दास मानिकपुरी। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म का नाम है दूल्हे राजा, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत है। समीर ने इसे लिखा है, आनंद मिलिंद का संगीत है। बाकी फिल्में हैं राजा हिंदुस्तानी, लव स्टोरी, बाबुल की गलियां और अपना बना लो।

दूल्हे राजा फिल्म का युगल गीत फरमाइशें आप सबकी। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा और डब्बू सम्राट। मुंदीचक भागलपुर के श्रोता हैं जिनका ये संदेश है दिलीप कुमार सोनी। ये फरमाइश है आर अश्विन, सानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्रों की, शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से आई हुई। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी के हमारे श्रोता। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि और आकाश प्रजापति हैं कोरवदा वाराणसी से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर के श्रोता। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा चंदन हमें सुन रहे हैं कुम्हार गली कोलगांव से, शुक्रिया आपका। बड़ी खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। जमशेदपुर झारखंड से सुपाही सही गांव है, वहां से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी और रेशमा कुमारी। आनंद मिश्रा और ममता मिश्रा शिवपुर वाराणसी के हमारे श्रोता। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से आपकी फरमाइश आई। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और सरफराज अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु पटियाला पंजाब से हैं। बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिवकुमार यादव, तनिष्का यादव, उमेश्वरी यादव, नौबत यादव, अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के श्रोता। ये फरमाइश यानी व्हाट्सएप संदेश लसुड़िया पाता नरसिंहगढ़ से। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका का। आसलगांव बाजार जलगांव से हैं राजू माठे, गजानन माठे, ज्ञानेश्वर और संजय माठे। अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, कैफ खान, नगर पंचायत गंगापुर गोला बाजार के श्रोता हैं। लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। सुमंत कुमार प्रजापति हाथौज बलिया उत्तर प्रदेश के श्रोता। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश छत्रपति संभाजीनगर से। अमितेश कुमार तिवारी हैं करनई बलिया के श्रोता। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशांदी और निमिता हुजा। भीलखेड़ी तहसील सारंगपुर से धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार डूडी, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा फगवाड़ा पंजाब से हैं। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, भगेलू यादव और राम समुजी यादव हैं वलीदपुर मढ़हा मऊ उत्तर प्रदेश से। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और रयान बाबू की फरमाइश आई। इफ्तखार अहमद, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ नई बाजार चंदौली से हैं। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। बसमत रोड परभणी से हैं रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, सृष्टि और समरजीत कारेगांवकर। मजनू का टीला दिल्ली के श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, साथ में माही मलिक। कोल सिटी

0: का खाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और अफजल मलिक। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने की फरमाइश है। आप हैं संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, चौखंडी, हाथी बाजार, वाराणसी से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, नगर पंचायत गंगापुर, वाराणसी से। मौसी अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी, कोटवा बनारस के हमारे श्रोता हैं। सदर बाजार, मारवाड़, बिलाड़ा, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो।
1: पूछो जरा पूछो।
0: और हम आपको बता रहे हैं इस गीत के फिल्म का नाम। बहुत सारी फरमाइशें हैं। राजा हिंदुस्तानी है फिल्म का नाम। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, और इस गीत के लिए फरमाइशें आप सबकी आई हैं। बिलाल बम्बैया और मोहम्मद हिलाल खान हैं गोलघर कुआत बिहार से। बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान के श्रोता हैं। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा पदमपुर गंगानगर राजस्थान से। ये फरमाइश है इशरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम और शाहबाज खान की गनगोला दातागंज बदायूं से। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी हैं। ये व्हाट्सएप संदेश है रामनगर बमोरी गुना से नरेश प्रजापति, मांगीलाल चंदेल और गजराज लोधी का। गमहरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। मोहम्मद जावेद खत्री, इकबाल खत्री, जैद और मुनीरा हैं महबूबपुरा सनावत से। इरशाद आजमी, अरबाज अहमद, अबू जर अहमद, अफसा बानो, अनम बानो हैं सोनवरा कोटिला आजमगढ़ से। ललन मिश्रा, अमन पराशर, आराध्या और लल्लू पंडित की फरमाइश नरहन स्टेट समस्तीपुर से आई हुई है। श्रवण निषाद, शनि निषाद, बॉबी निषाद आप सभी हैं उत्तर प्रदेश के श्रोता। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। सिराजुद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी, निसार अंसारी, बबलू अंसारी और आप सभी हैं जिला सूरत के श्रोता। लाल माता, सुदामा नगर, रटलाई, झालावाड़ राजस्थान से। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल की फरमाइश बबरी बाजार चंदौली से आई हुई है। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा है खरगोन सनावत से। मालियान सरदना मेरठ से हैं अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, भानुप्रिया और वर्षा सुमन की फरमाइश किशनगंज बिहार से। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद वर्मा और यश प्रयाण वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग के श्रोता। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, की सुतासु

आनंद पाकुड़ झारखंड से, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई, इसी गीत के लिए रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान की, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता पोफाली यवतमाल के आप श्रोता हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और राजपाल पंकज मुरादाबाद से,

ये जो नाम है महाराष्ट्र मुंबई डोंबिवली से आए हुए अरुण नैनर, सुनील जायसवाल और मनोज गुके, स्वागत है आप सबका। मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, जयराम बिंद और बीरेंद्र पांडे। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक और प्राची तन्नु करमरकर हैं बिरडी से। वीरेंद्र बिहाड़, सुरेंद्र बिहाड़, शमशेर और मनोज बिहाड़ हैं जेवरा हिसार के श्रोता। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ के श्रोता हैं दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमीन गुड़िया। श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:31 और 9 सेकंड का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लव स्टोरी से लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज़ी। फरमाइशें आई आप सबकी। मुंबई से हैं अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोता। उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, ग्रंथ और गौरी ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि आदित्य और अंजलि जंघेल। नाना डोंगर दिवे, रीमा डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे और दीक्षा डोंगर दिवे हैं टीवी टावर नागपुर से। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम मदरसा गेट भावपुर मणियाहू जौनपुर के श्रोता। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने हैं राहुल नगर अमरावती से। यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह सुल्तानपुर के श्रोता हैं। उकली बुजुर्ग से विठल क्षीर सागर, प्रतिभा क्षीर सागर और अभिजीत क्षीर सागर। विशाल मिश्रा, बंधवा बाजार, माधोपुरी मिलिया जौनपुर से हैं। तेलंगाना वारंगल से ख्वाजा रिजवानुद्दीन और आयशा तबस्सुम की फरमाइश है। नानाजी लाम से, मीना लाम से और तेजस लाम से हैं छिंदवाड़ा बेरेडी के श्रोता। रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली की फरमाइश है बारादरी रामपुर से। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, पवन कुमार सेन, प्रभा दवी सेन, लक्की विक्की और रविंद्र डौनक सेन की फरमाइश पंढरिया छत्तीसगढ़ से आई हुई। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजायनम और मुदस्सिर हुसैन हैं सब्जी मंडी बुल्ढाना से। हमारे श्रोता हैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट दुद्धि सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल और सानिका देठे पाटिल की फरमाइश बुल्ढाना महाराष्ट्र से आई हुई है। इमरती यादव, ग्राम भट्टी, सकलडीहा चंदौली से हैं। असगर अली हैं शिवपुर वाराणसी से।

खाना रोड बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुषी गुप्ता और सानवी गुप्ता की फरमाइश। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ। कष्टा बुजुर्ग अमरावती से हैं प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े और कुमारी प्रियाली हागोड़े। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी की फरमाइश माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से आई हुई है। नलगोंडा तेलंगाना से ये व्हाट्सएप संदेश मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरुन निशा का है। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ की फरमाइश कोली नांदेड़ से आई हुई है। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है बाबुल की गलियां। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, रवि का संगीत।

0: लेकिन अभी हम बताएंगे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस गाने के लिए फर्स्ट सब संदेश हमें भेजे हुए हैं। हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, शुक्रिया आपका। देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू की फरमाइश बोहिना पार बालोद से आई हुई है।
1: आगे बोलो।
2: यही आए मेरे सपने तो ये करना दे।
0: शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की फरमाइश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आई हुई है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा हमें सुन रहे हैं पिपरलोड सरगांव से। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू पोटिया कला दुर्ग से हैं। पंकज कुमार, सपना भारती, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।

एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल हैं जमानिया के हमारे श्रोता। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश हनुमानपुर मुगलसराय से आई हुई है सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, डब्लू जायसवाल और माया जायसवाल की। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती वर्मा, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा है दतरंगी से। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, मखदूम नगर, बजडीहा, वाराणसी के श्रोता। ये व्हाट्सएप संदेश गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद का। धानोरा विटाली नांदूरा से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। विनोदपुरी वीपी, रंजू, अशोकपुरी और सुशील पुरी हैं लुधियाना फतेहगढ़ से। बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े और आकांक्षा नरवाड़े। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा की फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज और परिवार के बाकी सदस्य। अख्तर खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान हैं गंगापुर जवाहरनगर से। कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार दिल्ली शहर मोरी गेट के श्रोता हैं। यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू की फरमाइश कर्मा चौक लोहारेडी से। दंतेवाड़ा बचेली से हैं बलराम सेन और इंदु सेन। प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी गुजरात गांधीग्राम से आपकी फरमाइश आई। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबला अंसारी और आलिया अंसारी। विक्रम कर्णवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कर्णवासरा हैं कलाना बहादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से। मुबारकपुर आशा तालाब से शाहीन फातमा और अनीस फातमा। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल हैं कस्बा बराडा अंबाला से। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और जगुताई राजे जाधव देशमुख हैं कालेगांव जाफराबाद से। मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निखात, परवीन नुसरत, परवीन सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी की फरमाइश है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो गंगापुर जवाहरनगर से हैं। कोटवा कबीलधारा, सराय मोहना वाराणसी से हैं रतिना त्रिपाठी, राखी, आर्या, एन्द्री, ओमनाथ, सारंग, शिवांग, अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल। निहारिका श्रीवास्तव हैं चेतगंज वाराणसी से, शुक्रिया आपका। साथ में आनंद प्रसाद श्रीवास्तव IMSPHU वाराणसी के। कोयला खदान मध्य प्रदेश के श्रोता हैं जवाहरलाल पटेल। श्रवण कुमार, राजकुमार, लवप्रीत, गुरताज और आप सभी हैं पिंड कुलारा तहसील शाहकोट पंजाब से। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिला और प्रगति नाचानी की फरमाइश। अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक अंसारी। मुनीब सिंह दरौली जमानिया से हैं। लिल्दानगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और दीनानाथ सिंह। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म है अपना बना लो, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अंतिम गीत के साथ अपनी फरमाइश शामिल करने का आग्रह वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो के हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड और रमा गुप्ता गौंड का आग्रह था। बहुत शुक्रिया आपका।

अपना बना लो फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज। और अब आपके फरमाइशों की दुनिया। धमतड़ी सोंगा छत्तीसगढ़ से हैं कोमल सेन और तोषण सेन, साथ में विनायक सेन।

ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष और आयुषी हैं बक्सर से। एक बात आपको कहें, ये जो आप इमेज खींच कर भेजते हैं, कई बार ये तस्वीर खुलती नहीं है संदेश में, तो लिख लें, एक बार लिखवा लें और फिर उसे पेस्ट कर दिया करें। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। राजेश मिश्रा अमलई शहडोल मध्य प्रदेश के श्रोता है। गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल की फरमाइश आई।

तो श्रोताओ, अब तक जितनी भी फरमाइशें आपकी आई हैं वो प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। और अभी अभी संदेश भेजा आपने खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा राम, देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम की फरमाइश।

सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल की फरमाइश अभी अभी आई है जमानिया गाजीपुर से। श्रोताओं, आपसे आग्रह करें कि तमाम प्रोग्राम जो हमारे चैनलों के आप सुनते हैं, विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी के, उसके बारे में अपनी राय जरूर हमें भेजें। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। वो प्रोग्राम रविवार को शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब और फेसबुक पेज और चैनल है, वहां भी हमसे जुड़े और कार्यक्रमों के बारे में जरूर अपनी जानकारी, विषय जो दिए हुए होते हैं तमाम प्रोग्राम के, उसमें शिरकत करें, शामिल हों। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम की जो मेल आईडी है उसमें फरमाइशें न भेजा करें। फरमाइशों के लिए जो मेल आईडी है वो है aiarvnsfgexp@gmail.com। कभी भी आप फरमाइशें या फिर पत्रोत्तर में अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के जो प्रोग्राम होते हैं वो उसी वक्त आपको फरमाइश भेजनी होती है। और अब आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी
1: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
1: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
1: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
1: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
1: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
1: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
1: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
1: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
2: जी।
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओ, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी।
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओ,

0: होता यह कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि एक कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।

0: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग जल की एक एक बूंद का, सदा करो सदुपयोग।
1: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
2: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
1: हाँ,
3: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
0: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
1: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
3: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जैसे?
0: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
1: बताओ।
0: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
1: ठीक है।
0: बताओ।
3: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
0: और
3: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छे।
1: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
1: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
1: वाह,
0: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
1: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
0: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: तो,
0: चलिए
1: शुरू हो जाओ।
0: बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
1: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।
4: जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन

0: और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
2: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
3: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
2: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
4: जी आदाब बजा लाता हूं जनाब, मोहानी की खिदमत में।
5: अरे आप, आदाब अर्ज आइए आइए, तशरीफ रखिए।
4: जी जी शुक्रिया।
5: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
4: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
5: जी बस
4: जी।
2: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
5: जनाब बस जरा सी देर और बस, यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
4: जी जी आप इत्मीनान से काम

0: करें। बाखुदा मैं मजे में हूं।
1: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं?
2: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
1: मोहानी साहब
0: जी,
1: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
3: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
1: क्या मतलब?
2: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
3: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
1: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
3: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
3: नौश फरमाइए मियां,
1: लाइए
3: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
2: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
5: लिख दिया।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
6: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
3: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह क्या बात है। है मश्क सुखन जारी,
7: चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह,
3: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
5: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत।
6: क्या
5: क्या
2: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
5: आजना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
7: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
5: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
3: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
7: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
3: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
5: क्या
3: जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
7: अरे मोहानी साहब,
3: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशआर सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
5: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें।
3: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
7: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
3: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
5: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
2: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैर बात कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया।

0: उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: कार्यक्रम में आज सुनते हैं आराधना विश्वकर्मा की गाई गजलें। पहली गजल शायर अफसोस की लिखी हुई।

0: फैज़ अहमद फैज़ की लिखी गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थीं आराधना विश्वकर्मा।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है शहनाई पर पेश कजरी धुन। कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

0: के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनर्समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुदोफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के मुताबिक कलेश उर्फ बुद्धू, पिता का नाम राजेंद्र, ये धनसिरिया मिर्जापुर के निवासी हैं और 31 मई 2026 से अपने घर से लापता हैं। कलेश उर्फ बुद्धू की आयु है 27 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, मजबूत शरीर, चेहरा गोल है। इनके दाहिने हाथ पर

ओम गुदा हुआ है। आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफ़ेद शर्ट और काले रंग की लोअर। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कलेश उर्फ बुद्धू के बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्ज़ापुर को सूचना दें। अनीता कुमारी, पति का नाम छविनाथ, ये लालगंज मिर्ज़ापुर की निवासी हैं और 19 जून 2026 की सुबह 10 बजे से लहंगपुर मिर्ज़ापुर से लापता हैं। अनीता कुमारी की आयु 36 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गोरा, शरीर सामान्य, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्ज़ापुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्ज़ापुर से ही प्राप्त एक और सूचना, इसके मुताबिक अर्जुन उर्फ गोलू, पिता का नाम महेंद्र, ये रानी का तालाब विजयपुर विंध्याचल मिर्ज़ापुर के निवासी हैं और 20 अप्रैल 2025 की सुबह 8:30 बजे से विजयपुर से लापता हैं। अर्जुन उर्फ गोलू की आयु 17 वर्ष, कद 5 फुट, रंग काला, एकहरा, मजबूत शरीर, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पैंट। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्ज़ापुर को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात में 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित चित्रंजन ज्योतिषी का गायन। रात में 10 बजे स्वास्थ्य पत्रिका प्रसारित होगी। रात्रि 9:30 पर अंजुमन कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें आप सुन सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे गजलें। फनकार होंगे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा के अलावा लोकगीत के कलाकार होंगे अमलेश कुमार पांडे, साथ ही बातचीत कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर डंगर राम भारद्वाज। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, शामे गजल, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। आज का ये प्रोग्राम सायरा बानो पर केंद्रित है, प्रस्तुति आशुतोष की। लोक संगीत कार्यक्रम में 1:45 पर अमलेश कुमार पांडे के गायन लोकगीत सुनवाए जाएंगे। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम होगा 1:15 पर, इसमें आज फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। ये कार्यक्रम सखियों के संग बातचीत पर आधारित है, साथ ही चर्चा और गीत संगीत। शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
2: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जापान और हिंदुस्तान के तलबा से मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की रूहानी सियाहत का मरकज है। उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ की सकाफती अहमियत का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आला ने इसे दो रवायात की मुलाकात करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के वर्क कल्चर और जिंदगी के फलसफे के बारे में जानने का मौका फराहम करता है।
3: यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो

0: देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर वहाँ की युवा पीढ़ी बैठी हुई है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमे समारी बहबूद के कामों और मंसूबों का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के काम को आसानी से चलाने के लिए जरूरी रहनुमा खतूत फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि कवायद का वाज़ह सेट तैयार करने, खाली तदरीसी ओहदों का इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के क्याम के लिए जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम तलबा के लिए दरख्वास्त पोर्टल को फौरी तौर पर खोला जाए और स्कॉलरशिप के फंड 2 अक्टूबर तक मुंतकिल किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के से संचालित है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे पेशावराना तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और सनअतकारी के एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए ITI को ज्यादा से ज्यादा सनअतों से मुंसलिक करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि निसाब और तरबियत को सनअत की जरूरियात की बुनियाद पर तैयार किया जाए, साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को फरोग दिया जाए। वज़ीर-ए-आला ने महारत की तरक्की को रोजगार और आलमी मौके से जोड़ने की जरूरियात पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ITI और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: अयोध्या राम मंदिर की तामीराती कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, बुनियादी जायजा भगवान के मंदिर और कॉम्प्लेक्स के हवाले से किया गया था। कुल तकरीबन 70 तामीराती मंसूबे हैं, जिनमें से 60 मुकम्मल हो चुके हैं और ट्रस्ट को दे दिए गए हैं। ट्रस्ट अब उनकी निगरानी करेगा। जनाब नृपेंद्र ने बताया कि हमारे नुक्ते नजर से सबसे अहम बात यह है कि तामीराती काम को हतमी शक्ल दी जाए, बंदिश ऑडिटर के जरिए की जाती है, जहां मजमूई तौर पर हम तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। ऑडिटोरियम और ट्रस्ट ऑफिस को तकरीबन 4 माह का काम दरकार है। म्यूजियम की फीस के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया। ये गैलरी नंबर 7 होगी और इसका खर्च तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। अब ट्रस्ट को यह फैसला करना चाहिए कि यह खर्च टिकटों के जरिए वसूल किया जाए या नुमाइश मुफ्त दिखाई जाए। हुकूमत ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मैट्रिक टन खाम चीनी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने गुज़िश्ता रोज जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा कि 10 लाख मैट्रिक टन खाम चीनी कुछ शरायत के साथ बगैर ड्यूटी के दरामद की जा सकती है। यह फैसला त्योहारों के सीजन से पहले लिया गया, जब चीनी की मांग में आमतौर पर इजाफा होता है। यह फैसला मकामी मार्केट में सप्लाई के खदशात के बाद किया गया। हिंदुस्तान दुनिया में चीनी पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बदायूं और बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाराबंकी, अयोध्या और तीर्थीपार में दरियाए घाघरा। रियासत में सैलाब और पानी जमा होने की सूरत हाल के दरमियान हुकूमत ने मुतासर अजला में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 सैलाब से मुतासर खानदानों में रिलीफ किट्स तकसीम की गई। बारिश की वजह से कल चित्रकूट में 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रहे। जिले इंतजामिया ने आज कई स्कूलों को बंद रखने के हुक्म दिया। प्रयागराज में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर सैलाब की वजह से ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और

0: 46 सेकंड हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। पहले कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: बरस रही है सावन की फुहार, हम लेकर आए हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में नगमे हजार, सखियों संग बातें, मुलाकातें और व्यंजनों की बहार। कैसे मिलेगा पोषण, आज इस पर करेंगे चर्चा हजार। स्वागत है सखियों आपका अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं हूँ आपकी सखी कंचन।
1: और मैं हूँ आपकी सखी सुरेखा। आप सभी को हम दोनों सखियां करते हैं नमस्कार, नमस्कार।
4: कैसी है सुरेखा जी?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से देख रही हूँ कंचन की तुम आज भी ऊपर से नीचे तक पूरे हरे रंग में हो, क्या बात है
4: भाई। सावन चल रहा है और हर तरफ जब हरियाली देखते हैं हम तो परिधान भी वैसा ही हो जाता है।
1: अच्छा, सावन में ना श्रृंगार करने का भी मन करता है।
4: हाँ।
1: प्रकृति तो श्रृंगार किए ही रहती है, लेकिन महिलाओं का भी मन करता है ना कि हम ऊपर से नीचे तक 16 श्रृंगार में रहें। लेकिन सावन में कुछ खास ऐसा है, पूजा पाठ है, तीज त्यौहार है, व्रत है, ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसा भी है कि हमें अपना ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है।
4: बिल्कुल,
1: और भी खास तौर से हम महिलाओं को
4: देना ही है भाई। पानी का भी इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, पीने वाला पानी है तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। कोशिश करें कि हम उबला हुआ पानी ठंडा करके पिएं, इस मौसम में तो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज्यादा, इस समय पनपते हैं, मच्छर बहुत सारे पनपते हैं बारिश के मौसम में, तो अपने खान पान का विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए।
1: खान पान, इसके साथ साथ साफ सफाई का भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि मच्छर जो पनप जाते हैं और इसीलिए इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, तमाम तरह की समस्या जो है लगभग हर घरों में हो जाती है। और ये ना पता है ऐसे बैक्टीरिया से ये फैलते हैं जैसे एक से दो, और अगर घर में किसी एक को हो गया तो लगभग सारा घर धीरे धीरे बीमार होने लगता है।
4: अक्सर हमने देखा है कि जब जुकाम किसी एक को होता है तो घर में सबको धीरे धीरे करके होने लगता है। तो ऐसे में बहुत ही सावधानी भी रखने की जरूरत है। तो ऐसे ही विषय पर हमने आज अपनी सखियों से बात भी तो की है।
1: बिल्कुल, आज शुक्रवार है और आज हमने अपनी सखियों से बहुत विशेष बातचीत की है, और उस आज की बातचीत का विषय है
4: सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। तो हमने क्या बात की है, आइए सुनते हैं।
1: हेलो, गृहलक्ष्मी के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम राखी है।
1: राखी, कहाँ से बात कर रही हैं?
5: हम तो बनारस से बात कर रहे हैं।
1: बनारस से बोल रही हैं। राखी जी, आप क्या करती हैं?
5: मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
1: हाउसवाइफ हैं?
5: हाँ, हमारा बिजनेस भी है, कभी कभी देख लेते हैं बिजनेस भी।
1: अच्छा, यानी आप घर के साथ साथ अपना काम भी संभालती हैं। मुझे ये बताइए कि सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में, सावन में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
5: सावन के महीने में एक तो सबसे पहले कि ये गर्मी से निजात मिलती है।
1: जी।
5: और मौसम इतना अच्छा होता है, मन आनंदित रहता है, हर काम में मन लगता है। फिर ये समय ऐसा होता है कि आप कहीं घूमने फिरने निकल सकते हैं, अच्छा लगता है, मतलब काफी अच्छा लगता है।
1: सावन में आप विशेष क्या करती?

0: है क्या कुछ बनाना खाना, जैसे ये पता है कि गर्मी के बाद जब सावन आता है तो मन बड़ा अच्छा हो जाता है और लगता ही है कि कुछ ना कुछ बनाते खाते रहो। तो सावन के ना जो पारंपरिक व्यंजन है उनका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो
1: सही
0: आप
1: बात है।
0: इस विशेष महीने में यानी सावन में क्या बनाना पसंद करती हैं?
1: नहीं, सावन में तो ज्यादातर पहले हम लोग छोटे थे तो अक्सर पकौड़ी वगैरह बनती थी। जहां बारिश शुरू होती है लगता है कि कुछ खाओ चटपटा, है ना। लेकिन अब जो है बच्चे क्या होता है कि वो ज्यादा ऑयली फूड पसंद नहीं करते, तो अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है ट्रेंड। तो कभी कभी हम लोग घर में जैसे साबूदाने के बड़े हैं, साबूदाने की खिचड़ी है, और नहीं पकोड़े बनते हैं लेकिन उतना फ्रिक्वेंट नहीं बनते जितना पहले बनते थे, है ना।
0: अच्छा। लेकिन सावन आते ही मन तो
1: हाँ
0: अभी भी यही करता है कि बस पकोड़े और चाय,
1: सही
0: मन
1: बात
0: तो
1: है,
0: होता
1: सही
0: है।
1: बात है। हाँ, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है पकोड़े और चाय का।
0: और सावन से जुड़ी कुछ विशेष ऐसी कोई बात या ऐसी कोई याद हो जो आपको अभी तक याद हो?
1: सावन में तो ऐसा है कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे ज्वाइंट फैमिली थी, तो बहुत से कजिन्स वगैरह थे और फ्रेंड्स। हम लोग पहले तो इतना टीवी देखने का ट्रेंड नहीं था ना, तो लोग अक्सर एक जगह इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे, जो भी हो अच्छा मौसम है तो उसको लोग एंजॉय करते थे, है ना। तो हम लोग छत पे जैसे बारिश का पानी आया, जो नाली होती थी उसमें हम लोग कुछ भर देते थे, है ना, जैसे कि वो पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाए छत पे। हाँ, और जब पानी इकट्ठा हो जाता था तो उसमें कागज की नाव बना के हम लोग सब लोग खूब तैराते थे
0: अरे
1: उसको।
0: वाह, ये तो लगभग सभी ने
1: हाँ
0: बचपन में किया होगा।
1: सही बात है, सही बात है। ये तो बहुत ही पसंदीदा मतलब गेम था, पानी गिराने की ये करना है।
0: जी
1: और उसके बाद मौसम अच्छा है तो मतलब फैमिली वाले अक्सर क्या होता था कि कहीं पिकनिक करने निकल गए, जैसे ये बारिश में ये जो जितने फॉल वगैरह होते हैं तो वहां पानी से भर जाते हैं, मतलब पानी रहता है तो वहां जाने में अच्छा लगता है। तो ये लखनिया दरी है, ये टांडा फॉल है, ये सब जगह हम लोग मतलब फैमिली के साथ।
0: अपनी पसंद का कोई एक गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: हाँ जी, आप भैरवी फिल्म का बलम केसरिया गीत बजा दीजिए।
0: तो चलिए आपकी पसंद पर सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सखी, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम प्रियंका है जी।
0: अच्छा प्रियंका जी, आप कहाँ रहती हैं?
1: मैं श्योपुर से बोल रही हूँ
0: अच्छा श्योपुर। आप
1: जी
0: हमारा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनती हैं?
1: जी जी मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा, क्या चीज़ें आपको पसंद हैं? कौन सी बातें पसंद हैं?
1: मुझे इसमें ये पसंद आता है कि इसमें गृह मतलब गृह के बारे में जो आप लोग बातचीत करते हो,
0: घर के
1: आप लोगों
0: बारे
1: की
0: में,
1: बात
0: आपके
1: जी
0: घर के बारे में।
1: हाँ घर के कार्य हर मतलब छोटी छोटी जानकारियां आप लोग देते हो, मुझे सुनना बहुत पसंद है
0: तो प्रियंका
1: जी।
0: जी, आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मैं हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और हस्बैंड है
0: अच्छा, बच्चे
1: जी।
0: पढ़ते हैं?
1: जी बच्चे दोनों पढ़ते हैं
0: तो प्रियंका जी,
1: और
0: जैसा कि आप जान रही हैं कि सावन चल रहा है, तो सावन के इस मौसम में आप क्या कुछ खास करना पसंद करती हैं?
1: सावन का मौसम जो कि मुझे मतलब हर मौसम से अगर देखा जाए ना तो मुझे सावन बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारे बाबा का महीना है ठीक
0: जी
1: है। और मुझे सावन में बाबा जी को जल चढ़ाना बहुत पसंद है
0: भोलेनाथ जी
1: और
0: पर।
1: हाँ मुझे भोलेनाथ जी पे मुझे ये विश्वनाथ जी जाके मुझे जल वल चढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये ना ये जो सावन का महीना है मुझे बहुत पसंद है। और मुझे सावन के महीने में जो होता नहीं है हर ग्रीन ग्रीन पहन के, हरा हरा पहन के, चूड़ियां पहन के, साड़ी
0: साजो
1: पहन के,
0: श्रृंगार
1: मतलब
0: करना पसंद है
1: एंजॉय करना बहुत
0: जी।
1: पसंद है, तो सावन मुझे बहुत पसंद है और मैं ये छोटी छोटी चीज करना भी पसंद करती हूँ और चारों तरफ हरियाली बहुत अच्छा लगता है
0: अच्छा, तो प्रियंका जी, जैसे कि सावन में बहुत सारे व्रत और त्योहार भी आते हैं, तो
1: जी।
0: आपको व्रत और त्योहार अच्छे लगते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सावन में तो मेरे महादेव जी का भी व्रत रहता है जी
0: अच्छा, तो आप और जो व्रत पढ़ते हैं, जैसे कजरी हो गई, अब आने वाली है, रज्जगा आने वाला है, और अभी
1: जी
0: एक सावन का सोमवार भी जो आखिरी है वो भी आने वाला है,
1: वो
0: तो
1: भी
0: इसके
1: है
0: लिए भी
1: हाँ
0: आप क्या कुछ खास तैयारी करके रखी हैं?
1: जी। और आप तीज तो हमारे इधर का तो बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है और रज्जगा में तो क्या ही बवाल मचाते हैं लोग बनारस में,
0: जी
1: तो मतलब तीज की तो तैयारियां हम लोग कहते नहीं कि एक तीज जो बीत चुकी होती है ना तभी से दूसरे तीज की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं
0: अच्छा, मतलब हरियाली तीज बीतती है तो कजरी तीज की तैयारी करती हैं।
1: हाँ कजरी तीज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो वो तो त्योहार मतलब अलग ही एक व्रत है, उसमें तैयार होना और पूजा पाठ करना मतलब अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है
0: लगता
1: जो
0: है।
1: कि ये
0: कौन कौन
1: सावन में
0: से
1: ही आता है।
0: व्यंजन हैं प्रियंका जी, जो आप इस समय बनाती हैं और वो सेहत की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं, और इस समय उनका स्वाद भी और अच्छा लगता है?
1: जी अगर वो कहा जाए कुछ भी आप मतलब कि बारिश हो सावन के महीने में बारिश होती है तो बारिश में ज्यादातर ये लगता है कि पकौड़ी बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो अगर उसे हम खुद से मतलब बनाओ और खुशी से खाओ ना तो

0: कुछ भी नुकसान करता ही नहीं है
1: अच्छा,
0: है ना।
1: और व्रत के दिनों में आप क्या कुछ बनाती हैं?
0: व्रत के दिन में तो जैसे वो साबुदाने का टिक्की हो गई, साबुदाने
1: अच्छा
0: की, और मतलब तरह तरह के नया नया मैं नई नई चीजें देखती हूँ तो उसे मैं ट्राई जरूर करती हूँ
1: अच्छा
0: जी।
1: और
0: सिंघाड़े के आटे की पूड़ी हो गई,
1: कोई
0: आलू
1: एक ऐसा
0: टमाटर।
1: परंपरागत व्यंजन भी है जो बहुत सालों से पहले से लोग बनाते आ रहे हैं सावन में?

0: पहले से लोग बनाते आ रहे हैं सावन में, व्रत त्योहार में, और अभी भी बनता है, हमारी दादी नानी बनाती हैं।
1: और हमारी दादी नानी लोग तो क्या ही बनाती थी, वही फ्राई आलू बना लेती थी
0: अच्छा
1: और सिंगाड़े के आटे का हलवा तो चलता ही आ रहा है कब से, है
0: अच्छा अच्छा
1: ना।
0: और
1: अभी
0: अरुई के
1: तो नई
0: पत्ते
1: नई
0: वत्ते
1: चीजें
0: की भी
1: चल रही
0: कुछ,
1: हैं
0: अरुई के पत्ते की भी कोई रेसिपी वगैरह बनाती हैं?
1: जी। अरवी के पत्ते का मैं वो उसकी पकौड़ी बना के मैं उसकी सब्जी बनाती हूँ ग्रेवी लगा के, वो बहुत अच्छा लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। और क्या कहते हैं उसकी पकौड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है।
0: प्रियंका जी, लग रहा है आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी की है, और ये सावन जो मौसम चल रहा है इसको आप मना भी रहे हैं बहुत अच्छे से।
1: जी जी
0: तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमें अपनी राय बताते रहिए। धन्यवाद।
1: जी जी
0: हेलो, गृहलक्ष्मी के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, मैं
0: मोनिका कहाँ से बात कर रही हैं?
2: वाराणसी से बात कर रही हूँ।
0: वाराणसी से बात कर रही हैं। मोनिका आप क्या करती हैं?
2: मैं स्कूल में अध्यापिका हूँ।
0: शिक्षिका हैं।
2: हाँ
0: तो सावन चल रहा है आपको,
2: जी जी
0: और
2: हाँ
0: घर घर में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं,
2: हाँ
0: इसके साथ ही साथ हरियाली तीज भी मनाई गई, और
2: बड़ा
0: साथ ही साथ सभी सखियां जो है वो सोलह श्रृंगार करती हैं।
2: जी
0: मौसम अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है।
2: हाँ
0: तो
2: हाँ
0: आप
2: हाँ
0: मुझे
2: बहुत
0: ये बताएं कि आप सावन को किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं?
2: अब सावन तो आपको पता है कि हरियाली का मौसम माना जाता है, तो सावन के मौसम में मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, क्योंकि तरह तरह के फूलों को लगाना मतलब, और हरियाली मुझे बहुत पसंद है और उसमें मेहनत भी थोड़ी कम लगती है, इसीलिए मुझे गार्डनिंग का शौक है।
0: ये अच्छा है कि मिट्टी फर्टाइल होती है, आप कुछ भी लगा दीजिए तो वो जल्दी लग जाती है ना?
2: हाँ, कोई भी पौधे लगाइए तो वो जल्दी
0: जल्दी ग्रो
2: वो
0: करने
2: करते
0: लगता
2: हैं।
0: है।
2: हाँ
0: तो
2: हाँ
0: और आप क्या करती हैं सावन में?
2: सावन के मौसम में सावन का सोमवार का व्रत रहा जाता है मतलब, और कोशिश रहती है कि हर मंडे को अलग अलग महादेव के दर्शन, यही सारी चीजें करती हूँ। और हाँ, जब बरसात का मौसम होता है तो समय गरम, यही
0: अच्छा
2: सब
0: अच्छा तो आप
2: खाने का मन
0: घूमने
2: होता है।
0: घूमने
2: हाँ
0: जाती हैं, घूमने जाती हैं कहीं?
2: हाँ घूमने का भी मौसम, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन करता है, जब
0: लॉन्ग ड्राइव।
2: बारिश होती है और अच्छा मौसम।
0: अच्छा, कोई ऐसी याद जो सावन से आपकी जुड़ी हो और अभी तक आपको याद हो?
2: सावन से जुड़ी आज ऐसा है कि दोस्तों के साथ ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे एक बार हम लोग गए थे बारिश रहते हुए, वहां पे जाके हम लोगों ने चाय पी हाईवे पे जा करके, और बस ऐसे ही फिर रेन डांस भी किया वहीं पे बीच में,
0: अच्छा,
2: और फिर बस वापस घर।
0: चलिए, तो
2: हाँ
0: ये आपको अभी तक याद है। चलिए, बहुत बहुत
2: जी हाँ
0: धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मोनिका आपका। हेलो सखी।
3: हेलो
0: हेलो, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम?
3: जी, मैं डॉक्टर अनुराधा बापली, मैं वसंत कन्या महाविद्यालय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है वहां पे मैं समाजशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ।
0: जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं?
3: जी मैम, ये तो बहुत लोकप्रिय है आपका कार्यक्रम, और बहुत धन्यवाद आपका।
0: मैम, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि सावन चल रहा है, तो सावन के
3: जी
0: इस महीने में क्या कुछ अच्छा लगता है आपको?
3: मैम, जैसा कि सावन का नाम लेते ही आंखों के सामने बिल्कुल हरियाली, उमड़ते घुमड़ते बादल, ठंडी हवा, ये दृश्य बिल्कुल सजीव हो उठता है। तो जहाँ ये हमारे आनंद, उल्लास और उमंग से जुड़ा हुआ है, वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो ये पूरा महीना ही जो है वो श्रद्धा, भक्ति, आस्था, संयम, शुचिता से जुड़ा है, क्योंकि जैसा कि हम सब काशी में रहते हैं और काशी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और इस महीने में जो है श्रावण मेला व्रत का आयोजन होता है, साथ ही कई सारे पर्व त्योहार जुड़े हुए हैं
0: जी
3: जैसे कि हरियाली तीज है, रक्षाबंधन है, तो

0: श्रावण सोमवार तो है ही, तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये महीना जो है आस्था उल्लास के साथ साथ हमारे सेहत से भी बहुत ही गहराई से जुड़ा है।
1: जी
0: क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, पवित्रता और शुचिता लोग उसका ध्यान रखते हैं, लोग व्रत करते हैं, हम सब व्रत करते हैं, तो ये बहुत निश्चित सी बात है कि व्रत में हम घर का बना हुआ सात्विक और शुद्ध खाना मतलब लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि और अगर आपने पूरा फलाहार रखा है तो आप उसमें ताजे फल हो गए या आपके सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स हैं, या कई बार लोग मूंगफली और मखाने वगैरह व्रत में लेते हैं, तो ये अपने आप में प्रोटीन और मल्टी विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। और साथ ही आप अगर जैसे लौकी की खीर है या फिर आप घर पे बना हुआ जो हरी सब्जियां हैं, जैसे इस समय अरुई के पत्तों की लोग पकौड़ी बना के खाते हैं या अरुई लेते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बेटर सोर्स है। चाहे हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो दूध है, दही, पनीर, ये सब जो है एक आपको संपूर्ण आहार की श्रेणी में आता है, जो आपको पूरी तरह से न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक रूप से फिट रहना ही नहीं है, बल्कि आपका मन भी जो है वो शांत और एकाग्र रहे, ये बहुत जरूरी है। और आजकल मेंटल हेल्थ पे ये अच्छी बात है कि भारत में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लोग काउंसलर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं।
1: जी।
0: तो जब हम पूजा जब व्रत करते हैं तो वो हमें इंद्रिय निग्रह की बात सिखाता है, यानी कैसे हमें अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें फास्ट फूड जंक फूड से के जो एक टेम्पटाइजिंग एक लालच होता है उस पे नियंत्रण करना है, हमें सही समय पे आहार लेना है, घर का बना हुआ ताजा शुद्ध आहार लेना है। और जब हम सात्विक लेते हैं, लोग जनरली नॉनवेज नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं सावन में, तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये हमें एक ओवरऑल हेल्दी बनाने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसा कि ये सबको मतलब हम सब हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि अगर हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक स्वस्थ नागरिक होना बहुत जरूरी है। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से, उमंग और उल्लास की दृष्टि से सावन जो है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी मैम, आपने तो सारी ही बात बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताई। इसका मतलब आप सावन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं, जीती हैं बिल्कुल।
0: जी मैम, कोशिश तो करती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पारंपरिक संगीत की परंपरा है, तो इस महीने में झूला, कजरी, ये सारे कजरी उत्सव मनाया जाता है, तो जब लोग उसमें, और यहाँ पे जो बनारस की जलेबी है वो तो बहुत खास है, इन अवसरों पे लोग हमेशा मतलब यहाँ पे विशेष वो जलेबा बनता है जो एकदम बहुत बड़े साइज का होता है और
1: बोल रहे हैं
0: जी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये इससे क्या होता है कि एक लोगों में एकता, एक एकजुटता, जो एक भाईचारा है वो भी बढ़ता है। जब घर की महिलाएं हैं, बाकी सदस्य हैं, वो इकट्ठा होकर संगीत उल्लास मनाते हैं, तो हम अपने कहीं ना कहीं उस व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा परिवार के साथ समय निकालते हैं, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं, तो इससे जो हमारी सोशल बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होती है। और बच्चे भी अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, अपने अध्यात्म से, संगीत से, धर्म से, संस्कृति से। तो हमारे अगर हम देखें हमारी संस्कृति में हर एक पर्व जो है वो हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और सावन हमें प्रकृति के निकट लाता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रकृति से जुड़े, हम उसके प्रति जागरूक बने और हम अपने देश को बचाएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें।
1: जी मैम, आपने जैसा संगीत के लिए अभी बोला, संगीत सुनते हैं और कजरी गाते हैं, तो क्या ऐसा कोई गीत है जो आपको बहुत पसंद है और आप सुनना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, आप जो यहाँ की बनारस की पारंपरिक कजरी है, यहाँ पे तो बहुत सारी मतलब फेमस कजरी है जो बनारस में गाई जाती है, मिर्जापुर की कजरी है, झूला है, तो आप अपनी पसंद से कोई भी हम सखियों को सुना सकती हैं, हम भी उसका आनंद लेंगे और सावन को और गहराई से अनुभव

0: कंचन,
1: हाँ
0: देखो सखियों से बात करते करते कब समय हो जाता है पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, समय तो बीत रहा है और अंदाजा तो नहीं लगता है जब हम सखियों से बात करते हैं। तो हमने तो आज बहुत सारी बात की है अपनी सखियों से, व्यंजन के बारे में, पर्व त्योहार के बारे में और सावन के बारे में। हम ऐसे ही और भी नए नए विषय लेकर उनसे बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे।
0: लेकिन हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें मेल करके जरूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com। तो हमें मेल जरूर करें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात।
3: गृहलक्ष्मी।

महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अमलेश कुमार पांडे के गाए लोकगीत। पहले सुनिए एक ढुनमुनिया कजरी।

0: चंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई

0: कई कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: फिल्मी दुनिया के अजीमो शान शाहकार, अपने फन के माहिर फनकार, जिनकी करते हैं हम बातें हर बार। पेश है प्रोग्राम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं अपने जमाने की शोक, चंचल और खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो।
1: मैं

23 अगस्त 1944 को मसूरी में जन्मी सायरा बानो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें अदाकारी अपनी विरासत में मिली थी। इनकी माँ नसीम बानो उस जमाने की मशहूर अदाकारा और रंगमंच कलाकार थीं। पिता एहसान उल हक जाने माने फिल्म निर्माता थे और दादी थीं छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थीं। इनका एक बड़ा भाई भी था जिनका नाम था सुल्तान अहमद। इनका यह परिवार उत्तर प्रदेश के हसनपुर का रहने वाला था। बाद में विभाजन के समय पिता पाकिस्तान चले गए, माँ यहीं रह गईं और सायरा पढ़ाई के लिए लंदन चली गईं।

0: राइटर आगा जानी कश्मीरी से उर्दू जुबान की तालीम। आपको बताते चलें कि सायरा बानो की शमी कपूर के साथ 1961 में आई पहली ही फिल्म जंगली, जो सुपर डुपर हिट रही, उसके राइटर भी आगा जानी कश्मीरी थे।
1: चाहे कोई मुझे जंगली

लंदन में पढ़ाई करते हुए भी सायरा की केवल दो ख्वाहिशें थीं। पहली, अपने माँ के जैसी ही मशहूर व मारूफ अदाकारा बनने की, और दूसरी कि उनकी शादी दिलीप कुमार से हो जाए, जिनकी वो बहुत बड़ी फैन थी। लंदन से पढ़ाई पूरी कर वापस आते ही उन्होंने अपने दोनों सपनों को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। अभिनेत्री बनने के लिए उन्होंने भरतनाट्यम और कथक सीखना शुरू किया और तत्कालीन मशहूर स्टोरी

0: दोस्तों, जंगली की सफलता ने सायराबानों के पंखों को परवाज दिया। पहली ही फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। फिर क्या था, यहां से सायराबानों का फिल्मी कैरियर बाकायदा आगे बढ़ता चला गया। यहां आपको एक छोटा सा किस्सा बताते चलें कि सायराबानों ये सोच के फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर पर गई थी कि वहां उन्हें दिलीप साहब से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन दिलीप साहब किसी कारण से इस फिल्म के प्रीमियर पर नहीं आ सके। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि सायरा का सपना था दिलीप साहब से शादी करने का, और ये बात उनके मन में तब से थी जब उन्होंने दिलीप साहब की फिल्म आन देखी थी। आन से शुरू हुई ये दीवानगी मुगले आजम तक आई, लेकिन अब जब यहाँ भी उनसे भेंट नहीं हुई तो सायरा का दिल टूट गया। इन्होंने तय किया कि वे फिल्मों में सफल अदाकारा बनेंगी और दिलीप साहब से ही शादी करेंगी।
1: अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार

दोस्तों, अब तक सायरा बानो रूमानी फिल्मों की एक मशहूर और मकबूल अदाकारा बन चुकी थी। अपनी चमकती आंखें, नटखट संवाद अदायगी और तीखे नयन नक्श से ये दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ भी इन्होंने जोड़ी बनाई। जो दो सबसे ज्यादा मशहूर फिल्में थीं, वो थीं झुक गया आसमान और आई मिलन की बेला।

दोस्तों, देवानंद के साथ भी इन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम था प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ इनकी तीन फिल्में आई, शादी, बलिदान और सुपरहिट फिल्म पूरब और पश्चिम।

अब तक सायरा बानो का फिल्मी कैरियर अपने पीक पर आ चुका था। हुआ कुछ यूं कि सायरा बानो और दिलीप कुमार एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दिलीप साहब ने सायरा बानो को प्रपोज कर दिया। सायरा को तो मानो दोनों जहान की खुशियां ही मिल गईं। फिर उनका बचपन का ख्वाब जो पूरा हो रहा था, और आखिरकार 11 अक्टूबर 1966 को इन दोनों का निकाह हो गया।

शादी के बाद सारा बानू की जो पहली फिल्म आई वो थी राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म अमन। बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र के साथ आपने 6 फिल्में की, ज्वारभाटा, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेटमार, इंटरनेशनल क्रुक और चैताली, जिनमें से की 5 फिल्में सुपरहिट रही। और दोस्तों इसके बाद 1968 में आई वो फिल्म जिसने सारा बानू का सिक्का जमा दिया और जिसका नाम था पड़ोसन। ज्योति स्वरूप की इस फिल्म में सारा बानू के अपोजिट थे सुनील दत्त। इस फिल्म ने सारा बानू के कैरियर को नई ऊंचाइयां बख्शी।

आपको बता दें कि दिलीप साहब के साथ इनकी तीन फिल्में आई, समीना, बैराग और गोपी। इन सब के अलावा भी इनकी कई फिल्में हैं जो सुपरहिट रहीं, जैसे कि नवीन निश्चल के साथ विक्टोरिया नंबर 203, विनोद खन्ना के साथ आरोप, अमिताभ बच्चन के साथ जमीर और हेरा फेरी।

सुनील दत्त के साथ 1988 में आई फिल्म फैसला बड़ी भूमिका वाली इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने रुपहले पर्दे को अलविदा कह दिया। दोस्तों, सारा बानो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने जिंदगी में जो चाहा उसे पाया। उन्होंने अभिनय किया तो पूरी शिद्दत के साथ और प्यार किया पूरे समर्पण के साथ। कल यानी 23 अगस्त को है इन चुलबुल अदाकारा का जन्मदिन।

दोस्तों, आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्रित था अपने दौर की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम एफ 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, वेब्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:03 हो रहे हैं, आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

धरती फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण और हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है फिल्म वासना से, रचना साहिर की, संगीतकार चित्रगुप्त।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज़ में, फिल्म का नाम था चितचोर। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

0: जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया।
1: आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के युवाणी कार्यक्रम में, और आज का कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हैं आपकी ये दो साथी, यानी कि मैं प्रगति
1: और मैं आराध्या। और स्वीकार करिए हमारा ये प्यारा सा
0: नमस्कार।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान

0: आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658,
5: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। आतंकवाद भी एक ऐसी ही गंभीर समस्या है जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। इन्हीं पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने, उनके साथ खड़े होने के संदेश के साथ हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
7: यह दिन उन लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए है जिनकी जिंदगी आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित हुई है।
6: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2017 में एक प्रस्ताव के जरिए 21 अगस्त को यह दिवस घोषित किया था। इसका मकसद सिर्फ आतंकवाद में जान गंवाने वालों को याद करना नहीं बल्कि उन लोगों के साथ खड़े होना भी है जो ऐसी घटनाओं के बाद किसी अपने को खो देते हैं या खुद मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं।
7: इस दिन आतंकवाद में जान गंवाने वालों लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा जाता है और पीड़ितों तथा इससे बचने वाले लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा का संदेश भी दिया जाता है। तो आइए इस दिन हम उन सभी पीड़ितों को याद करें और यह संदेश दें कि मुश्किल की घड़ी में पीड़ित अकेले नहीं हैं। उनकी आवाज़ सुनना, उनका सम्मान करना और उन्हें ज़रूरी सहयोग देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
6: और जब हम समाज की बात करते हैं तो ऐसे कई लोग भी याद आते हैं जिन्हें अपने काम के जरिए समाज की समस्याओं को लोगों के सामने रखने और जागरूकता फैलाने की कोशिश की है।
7: और बॉलीवुड में भी ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने सिर्फ मनोरंजन तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि अपनी फिल्मों और कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक मुद्दों पर भी बात की।
6: ऐसे ही एक जाने माने अभिनेता आमिर खान हैं, जिनका पूरा नाम आमिर हुसैन खान है, जिनका जन्म 14 मार्च 1965 में मुंबई में हुआ था। प्रगति, क्या तुमने दंगल मूवी देखी है?
7: हाँ, देखा है मैंने।
6: और उसके एक्टर को जानती हो?
7: बिल्कुल।
6: कौन है उनके एक्टर?
7: आमिर खान।
6: और क्या तुम्हें पता है कि उनके पिता भी फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, इसीलिए आमिर खान का बचपन भी फिल्मी माहौल में ही बीता था।
7: उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में उन्होंने यादों की बारात फिल्म से ही अपने काम की शुरुआत की थी।
6: फिर बड़े होकर उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी की। 1988 में कयामत से कयामत तक फिल्म में हीरो के रूप में शुरुआत की। यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई और आमिर खान रातों रात लोगों के बीच में मशहूर हो गए।
7: उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया होगा ना?
6: हाँ हाँ, बिल्कुल। वैसे तुम कुछ फिल्मों का नाम बता सकती हो?
7: हाँ, उसमें जैसे कि दिल है, जो जीता वही सिकंदर, राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, गजनी, रंग दे बसंती, धूम 3, PK, दंगल, सितारे जमीन पर, लाल सिंह चड्ढा और दूसरी कई सारी फिल्मों में भी उन्होंने अपना काम किया है और उनकी एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है।
6: एक बात बताऊं, मुझे उनकी लगान फिल्म बहुत अच्छी लगती है।

0: उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, लगान बहुत खास फिल्म थी। यह फिल्म 2001 में आई थी। इसमें आमिर खान ने एक गांव के लड़के का किरदार निभाया था। फिल्म में अंग्रेजों के समय की कहानी दिखाई गई थी। और तारे जमी पर भी तो उनकी बहुत अच्छी फिल्मों में से एक है।
1: बिल्कुल, तारे ज़मीन पर में एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाई गई थी जिसे पढ़ाई में परेशानी होती थी। फिल्म में यह सीख मिलती है कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी बुद्धि समझने की प्रक्रिया अलग होती है, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा आराध्या, तुम्हें पता है मुझे थ्री इडियट्स मूवी भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें पढ़ाई और बच्चों के ऊपर पड़ने वाले दबाव के बारे में बताया गया था।
1: हाँ, और आमिर खान ने उसमें रणछोड़ दास यानी रेंचो का रोल किया था। उनका वह किरदार आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। आमिर खान अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्रगति बहुत ज़्यादा वह जिस किरदार को निभाते हैं उसके लिए अपने लुक और शरीर के बदलाव को भी कर लेते हैं।
0: इसलिए लोग उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है दंगल मूवी के लिए उन्होंने अपना कितना वजन बढ़ाया था?
1: नहीं, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन दंगल मूवी में उन्होंने महावीर फोगाट का रोल किया था। यह फिल्म बेटियों के खेल में आगे बढ़ने और अपने सपने को पूरा करने की कहानी थी। और साथ ही साथ उन्होंने टीवी पर एक अच्छा सा कार्यक्रम भी किया था जिसका नाम था सत्यमेव जयते, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। उसमें समाज से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में बात की गई थी।
0: अब समझ आया कि आमिर खान इतने मशहूर क्यों हैं। वह सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को कुछ अच्छा भी सीखने का मौका देते हैं।
1: बिल्कुल, यही वजह है कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्हें बॉलीवुड में अपनी मेहनत से ही एक अलग ही पहचान मिली है। सच में आमिर खान फिल्मी सफर की एक अच्छी और प्रेरणादायक निर्माता रहे हैं। उनकी फिल्मों में हमें मनोरंजन के साथ साथ मेहनत करने के और अपने सपने को पूरा करने की भी सीख मिलती है।
0: तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों, अब वक्त है अपनी भाषा को और मजबूत बनाने का। तो आइए जानते हैं आज की यूथ डायरी में हमारे खास हिंदी और अंग्रेजी के शब्द। तो आज हमारा हिंदी का जो शब्द है वो है परिप्रेक्ष्य, जिसका अर्थ है दृष्टिकोण या नज़रिया। इसका मतलब किसी विषय, स्थिति या वस्तु को देखने, समझने और उस पर विचार करने का विशेष तरीका या संदर्भ है। जिसका वाक्य प्रयोग होगा, शिक्षक ने छात्र को जीवन में एक नए परिप्रेक्ष्य से देखना सिखाया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था।
1: और इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है अनटेनेबल, जिसका अर्थ होता है अस्थिर या असहनीय। और इसकी स्पेलिंग है UNTENABLE। और इसका वाक्य प्रयोग है, हिज वीक आर्ग्यूमेंट क्विकली प्रूव टू बी अनटेनेबल ड्यूरिंग द डिबेट, जिसका अर्थ है बहस के दौरान उसका कमजोर तर्क जल्द ही टिकाऊ न रहने वाला साबित हो गया। और इसका दूसरा वाक्य प्रयोग है, हर स्ट्रीम वर्क आवर्स क्रिएट ऑन अनटेनेबल लाइफस्टाइल, जिसका अर्थ है उसके बहुत अधिक काम के घंटों के कारण उसकी जीवन शैली टिकाऊ नहीं रही।
0: तो अब बारी है हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो चलिए हम जानते हैं आज का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा कल का क्वेश्चन क्या था और उसका जो सही जवाब देने वाले विजेता हैं उनके नाम। तो दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, राहवीर योजना किस मंत्रालय की पहल है, जिसका सही उत्तर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जिसमें सही जवाब देने वाले हमारे विजेताओं के नाम हैं, प्रवीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, रवि मौर्य ग्राम सिमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ग्राम पिपलौड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
1: और दोस्तों, इसी के साथ अब बारी है हमारे आज के सवाल को जानने की। तो अपने रेडियो की आवाज़ बढ़ा लीजिए और ध्यान से सुनिए हमारा आज का सवाल। तो हमारा आज का सवाल है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? सवाल फिर से दोहराती हूँ, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी youth AIR वाराणसी।

0: और हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youthairvns@gmail.com पर। तो फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए और हमें अपना जवाब दीजिए।
1: और तब तक के लिए सुनिए ये गीत।

0: दोस्तों, अब थोड़ा सा विराम लेते हैं और चलते हैं अपने इतिहास की ओर। इतिहास हमें यह बताता है कि बीते हुए कल की घटनाएं आज की पहचान बनाती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आज ही के दिन यानी 21 अगस्त 1959 में हवाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 50वां राज्य बना था, और आज ही के दिन यानी 21 अगस्त 1972 में भारत की संसद ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था।
1: 21 अगस्त 2005 में भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ था, और आज ही के दिन 2008 में भारत ने चंद्रमा के पहले खोज अभियान चंद्रयान 1 के लिए नासा के साथ साझेदारी भी की थी। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे रोजगार सूचना की। तो आराध्या, जरा दोस्तों को बताओ कि आज का हमारा रोजगार सूचना क्या है।
0: बिल्कुल दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की तरफ से आई है, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क SCSA की 16वीं भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन फॉर्म 1 अगस्त 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: इसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2026 तक मान्य होगी। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक गीत।

0: अच्छा आराध्या, तुम अभी मुझे बहुत खुश नजर आ रही हो। इसके पहले तो तुम थोड़ी खोई खोई सी और थोड़ी गुमसुम सी भी लग रही थी। ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अब अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ रहना सीख रही हूँ। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, हमें खुश रहना चाहिए। हमारा नज़रिया बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। इसलिए आज युववाणी में हम बात करेंगे उस सोच की जो मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, और वह सोच है सकारात्मक सोच।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी दिन बहुत अच्छा होता है तो कभी लगता है कि आज तो कुछ भी सही ही नहीं हुआ है हमारे साथ। कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, और कभी हम बिना ही किसी वजह के नकारात्मक चीज़ें सोचने लगते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें सोचते हैं। लेकिन ऐसे

0: समय में हमें खुद से एक बात जरूर कहनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।
1: सही बात है, लेकिन सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज कर दें, हर समय खुश रहने का दिखावा करें। इसका मतलब है बस इतना सा कि मुश्किल परिस्थिति में भी हम उम्मीदों पर का दामन ना छोड़ें। मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसमें सफलता नहीं मिली। अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप सच सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, या फिर ये सोचें कि ठीक है, इस बार गलती हुई, अगली बार इसे सुधार कर फिर कोशिश करूंगी। बस यह छोटा सा नज़रिया हमारी पूरी ज़िंदगी की सोच बदल सकता है।
0: और कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करके भी परेशान हो जाते हैं। कोई हमसे आगे निकल गया है, किसी को नौकरी मिल गई है, किसी का करियर अच्छा चल रहा है, और फिर हमें लगता है कि हम पीछे ही रह गए हैं। लेकिन हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की थोड़ी देर से होती है। इसलिए अपनी कहानी की तुलना किसी और की कहानी से मत करिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, खुद को समय दीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करिए। उनको यह छोड़ के मत छोड़ दीजिए कि ये तो छोटा मोटा ही मुझे जो भी अचीवमेंट हुआ है मिला है, क्यों ना इसको भी हम बड़ा कर सोच कर, इससे भी बड़ा सोच कर सेलिब्रेट करें। इसीलिए बड़ी सफलता भी छोटी छोटी कोशिशों से मिलाकर बनती है।
0: जी हाँ, अगर आज का दिन आपके हिसाब से नहीं गया तो परेशान मत होइए। कल एक नया दिन है, नई शुरुआत है और नई उम्मीदें भी हैं। हालात चाहे जैसे हों, अपनी सोच को हमेशा मजबूत रखिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि सकारात्मक सोच से समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन समस्या का समाधान निकल जाता है। और सकारात्मक सोच के जरिए ही हमारा शारीरिक रूप, हमारी मानसिकता, इन सब में भी बदलाव देखने को मिलता है। खुद पर विश्वास रखिए, मुस्कुराते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि अपनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।
0: और हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी का सफ़र अलग होता है। इसलिए अगर अभी हम ज़िंदगी में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। बस खुद से इतना कहिए, अभी वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जी, छोटी छोटी खुशियों को भी नज़रअंदाज मत करिए। दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती, पसंदीदा गाने, परिवार के साथ समय, ये छोटी चीज़ भी हमारी सोच को बेहतर बना सकती हैं। सकारात्मक रहने का सबसे आसान तरीका है मुश्किल में भी उम्मीद बनाए रखना और खुद पर भरोसा रखना। क्योंकि परेशानी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। तो आज से एक छोटा सा वादा खुद से कर लीजिए, परिस्थिति चाहे जैसी हो, सोच को हमेशा सकारात्मक रखेंगे।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनिए ये प्यारा सा गीत मेरे यानी आराध्या,
0: और
1: और
0: प्रगति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम विकास राय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में भारत और जापान का विद्यार्थी लोगों के साथ संवाद कैलें। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि ये मुलाकात दुई गो समृद्ध संस्कृति महान परंपरा आ दुई देशन के भविष्य का सुंदर संगम हो। वहां के कहें कि अगला वर्ष भारत और जापान का राजनयिक संबंध के स्थापना का 75 वर्ष पूरा होके जा रहा हो और ऐसा समय में दोनों देशन का ये विद्यार्थी भविष्य का राजदूत के रूप में यह संबंध के नया ऊंचाई देवे का क्षमता रखे लें।
1: जापान की अपनी स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पुण्यतिथि के मौका पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल भइलें और उन्हें श्रद्धांजलि दिलें। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि कल्याण सिंह का जिंदगी वह सज्जो भारतीय बदे प्रेरणा का स्रोत हो जे राष्ट्र प्रथम का भाव रखेला। वहां के कहने की पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सादगी, तप और साधना से भरा जीवन लोगों के हमेशा प्रेरणा देत रही। सर्वोच्च न्यायालय प्रदेश स्तर का न्यायिक सेवा परीक्षा देवे के संबंध में विधि स्नातक लोगों बदे अनिवार्य 3 वर्ष के वकालत का समय सीमा घटा के 1 वर्ष कह दिए हो। न्यायालय इस बारे में पछिला वर्ष का अपना ही फैसला में संशोधन कैले हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसीह आ के विनोद चंद्रन का पीठ पुनर्समीक्षा के खारिज करत 2-1 से ये फैसला दिलस। एगो रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: प्रदेश सरकार काल देर रात 9 IPS अधिकारियों का तबादला कैले हो। यह में झांसी, मेरठ, गोंडा के साथ 7 जिलन का पुलिस कप्तानों शामिल हवे। मेरठ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP अविनाश पांडे के पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कैल गेल हो। झांसी का SSP BBGTS मूर्ति के अविनाश पांडे के जगह पर मेरठ भेजल गई हो। बलरामपुर का पुलिस कप्तान विकास कुमार झांसी का नया SSP हुई है। हरदोई में तैनात मारतंड प्रकाश सिंह के बलरामपुर का पुलिस अधीक्षक के पद पर नया तैनाती मिलल हो। संभल में तैनात कृष्ण कुमार के बिजनौर और बिजनौर

पुलिस अधीक्षक अभिषेक के गोंडा का प्रभार सौंपल गई हो। बाराबंकी के पुलिस कप्तान विकास चंद्र त्रिपाठी के संभल का जिम्मेदारी दिहल गई हो। एक अलावा गोंडा का पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल के सुल्तानपुर और यही पद पर तैनात सुल्तानपुर का एसपी चारू निगम के शासन यूपी 112 का पुलिस अधीक्षक बनौले हो। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या में कहलें कि मंदिर हाता में तय कैल गेल करीब 70 निर्माण कार्यन में से करीब 60 कार्य पूरा हो चुकल हो आ उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सौंप दिया गया हो। अब एक रख रखाव का जिम्मेवारी ट्रस्ट का हुई। वहां के बतौले की अब संग्रहालय ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण पर खास ध्यान रही। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला चल रहा हो। मौसम विभाग के हिसाब से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अगला 7 दिन ले कई जगह पर बरखा और गरज चमक का दौर जारी रहने का अनेसा हो। उहर बरखा और बैराजन से पानी छोड़ल गयले के नाते बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रही हो। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव का हालत के बीच सरकार प्रभावित जिलन में राहत और बचाव कार्यन के तेज कह दिले हो। प्रयागराज में बीतल 2 दिन में भईल बरखा से कई जगह पर जलभराव हो गई हो। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर गयले के नाते ट्रेनन की आवाजाही पर प्रभाव पड़ल हो। समाचार पूरा भईल। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले आज के कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी का सितार वादन। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन, इस विषय पर सुनेंगे डॉक्टर डंगर राम भारद्वाज से बातचीत। साथ ही होगा अमलेश कुमार पांडे का गाया लोकगीत। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। रात्रि 9:30 पर सुनिए अंजुमन और रात्रि 10:00 सुनेंगे स्वास्थ्य पत्रिका। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। और अब लीजिए सुनिए कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात्रि 9:30 पर सुनिए विज्ञान पत्रिका। और कल रात्रि 10:00 सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। हम आपको एक बार फिर से बता दें, कल रात्रि 9:30 पर आप सुनिए विज्ञान पत्रिका का कार्यक्रम विज्ञान भारती, और कल रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनेंगे आशीष कुमार जायसवाल का ध्रुपद गायन। सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा में कैंसर रोग एक जानकारी, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर असीम मिश्रा। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में तिलहनी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:00, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, झंकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00, दिन में 11:00 फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश सुनेगा, प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी, और दिन में 12:00 सुनिए कार्यक्रम कहकशा में गैर फिल्मी गीत एवं गजलें।

दिन में 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा शिवा मिश्रा, और रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में ए हरिहरन की गाई गजलें होंगी। एक बार फिर से सुन लें, दिन में 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा शिवा मिश्रा के गाए भजन, और रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में ही आप सुनेंगे ए हरिहरन की गाई गजलें। दिन में 1:15 बजे महिलाएं अंगनैया कार्यक्रम में सब्जियों का प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास विषय पर सुनेंगी डॉक्टर स्वाति शर्मा से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, साथ ही होगा गीत संगीत। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे नन्ही दुनिया। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत। शाम 6:30 पर सुनेंगे किसान वाणी, जिसमें अन्य जानकारियों के अलावा प्रमुख आवश्यक खनिज तत्वों की कमी से पशुओं में होने वाले रोग, लक्षण और उपचार, इस विषय पर सुनिए डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा से बातचीत, साथ ही होगा बाबूलाल यादव और साथी का गाया लोकगीत। बाबूलाल यादव और साथी के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा। शाम 7:31 पर सौर बेला कार्यक्रम में आनंद कुमार मासूम का काव्य पाठ आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आया सावन झूम के फिल्म से ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं ये रचनाएं हेमलता की आवाज़ में फिल्म चितचोर से।

0: मंत्रिमंडलेन गतमासे पञ्चशतोत्तर द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां व्यय विनियोगेन सह एषा योजना अंगीकृता आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये प्रायः नवसप्तत्यधिकैकशत कोटि रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। समारोहानन्तरं कार्मिकान् संबोधयन् गृहमंत्री अवदत् यत् यदा भाजप सर्वकारः केन्द्रे सत्तां प्राप्नोत् सीमा सुरक्षार्थं उत्तरदायिनां कर्मचारिणां कल्याणाय सर्वोच्च प्राथमिकता तदा दत्तास्तीति। सः अधोरेखितवान् यत् SSB इति बलं नेपाल भूटान इत्यादि देशैः सह मुक्त सीमायाः रक्षणस्य समाह्वानपूर्णं कार्यं निर्वहतीति। एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान्। अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलीगुड़ी मार्गस्य महत्वम् अवगन्तुं केन्द्र सर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्ति इति।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम्। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा संधिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यति। उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि। पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतञ्च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणम् अधोरेखितवान्।
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण

0: राम राम।
1: और सुनावा हो बिरजू भैया, का हाल चल अपने खेती किसानी का?
0: देखा भोला भैया, खेती किसानी तो अब रोपनी के कार्यक्रम लगभग जे बड़ किसान छोट किसान लघु किसान जे भी भैया लोग है सब ही के धीरे धीरे संपन्न हो गल है। आ वही में वाला केहू का अगर पछुआयल
1: पछुआयल छूटल छाटल हो
0: छूटल छाटल बीढ़ा जौन होला कह जला भैया कि खेती कुल हो जाए लेकिन अगर बीढ़ा ना रोपाला ना तो वो लगा ला कि भैया खेती अधूरा रह गई। तो ऐसे जितना हमरे सचेत किसान हुआ वो कुल खेती के बाद बीढ़ा जरूर रोपवा हुआ। तो हम तो कहब कि भाई खेती किसानी में आदमी के अपन बढ़िया से सूझबूझ से काम करे ही के चाहिए।
1: बिल्कुल करे के चाहिए।
0: आ देखा ये भैया खेती किसानी के बात मन करते हैं, देखा खेती और किसानी में हमन के सरकार तरह तरह का योजना चलोले बा। आ किसान भैया लोग हमरे लाभ भी लेते हुए। आ वही में देखा एक ठे योजना हुआ अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना ये है भैया ना कि जिसे हमार सरकार असंगठित जौन क्षेत्र बा उनमें मजदूर भाई बाणा असहाय गरीब लोग बाणा खास करके वो लोग बदे योजना चलावल गई है
1: जो बहुत चीजन से वंचित हुए।
0: हाँ
1: का मतलब ये है ना बिरजू भैया?
0: हाँ तो देखा ये योजना में वह लोग पात्र हुए हैं भैया जे असहाय बा गरीब बा मजदूर बा ताकि वो थोड़ा सा अपन काम धंधा करके अगर थोड़ा सा पैसा निवेश अगर करत हुआ तो अपने बुढ़ापा बदे वो बहुत सहारा रही
1: और दो पैसा इसे जुटा भी नहीं है।
0: हाँ तो भैया एके भरे बदे 18 से लेके 40 बरिस के बीच में ये सहभागी में हो सकल। तो जिसे 18 बरिस के उम्र अगर बा तो 18 बरिस के उम्र में आप अगर भरी हैं तो थोड़ा कम प्रीमियर भरे के पड़ी, जैसे 210 रुपया प्रतिमाह ओके भरी हैं। तो
1: मतलब हमें बिरजू भैया उम्र आयु के हिसाब से हो कि जितना पहले अगर मन ही जुड़ जाई
0: हाँ
1: तो ओके उतना लाभ मिली और ओके प्रीमियम भी उतना कम से कम भरे के।
0: एकदम सही कला है। तब ऐसे जेकर भाई ना जानकारी है हम तो कहब कि ब्लॉक पर जाके योजना के बारे में बढ़िया से समझला आज जागरूक होके अपने भी भरा अगल बगल जो पास पड़ोस के लोग हुए उनके भी लाभ।

0: करा
1: हाँ
0: ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द इससे जुड़े और एक लाभ उठावें। तो
1: हाँ
0: कुल मिला के कर निचोड़ ये है बिरजू भैया कि जितना 18 साल के बाद, 19 साल हो गए चाहे 20 साल हो गए, जितना जल्दी से जल्दी ई योजना से लोग जुड़ी हैं मनई जुड़ी हैं उतना अच्छा उनके लाभ 60 वर्ष के बाद हुई।
1: एम ए है ना कि जितना लेट आप अगर भरत हुआ तो उकर प्रीमियम बढ़त चल जाए, तो जितना पहले अगर चेत ली हैं आप उतना आपके प्रीमियम कम भरे की पड़ी आ आपके एकर लाभ ज़्यादा मिले।
0: सही कहला बिरजू भैया। अटल पेंशन योजना का ई खास विशेषता हो कि 60 वर्ष के बाद तक जब मनई जीवित रही तो ऊ सरकार की गारंटी हो सरकार के तरफ से, क्योंकि 1,000 से 5,000 तक के बीच में पेंशन का जो व्यवस्था सरकार देता हो

0: 5,000 तक के बीच में पेंशन का जो व्यवस्था सरकार देता हो वो मिलत रही।
1: एकदम सही कला भैया। आ देखा इहो में एक बात है भोला भैया।
0: हाँ बिरजू भैया,
1: कि अगर मान ला पति पत्नी जीवन साथी जौन बाणा अकस्मात के ऊ में मान ला अगर मृत्यु हो गई
0: एक लोग कोई भी,
1: हाँ तो भैया अगर उनकर मृत्यु हो जाते तो उनके जीवन साथी के ऊ उतने पेंशन मिली। हाँ अगर मान ला बाई चांस खुदा नका से अगर दोनों लोगों का मृत्यु हो जाते तो उन जितना जमा राशि रही उनकर उनके नामिनी के मिल जाए।
0: अच्छा, जे मतलब जेकर नाम वो डल्ले रहे हैं,
1: हाँ हाँ
0: नामिनी,
1: हाँ
0: उनके वो सारा रकम जो हो सरकार के तरफ से
1: हाँ
0: कुल
1: हाँ
0: जोड़ के मिल जाए।
1: हाँ हाँ हाँ तो ये बहुत अच्छी योजना है भैया। एकर भैया सबके लाभ उठावे के चाहिए। आ देखा हम तो कहते हैं कि ये जौन गाढ़ी कमाई छोट मोट जौन बचत होते तो हम कहब कि जौन असहाय भैया लोग हुए ओके बचत करके अपना प्रीमियम भरें। आ एकरे बदे यो एक चीज़ है बोला भैया।
0: हाँ बिरजू भैया,
1: कि देखा एकरे बदे आवेदन करे से पहले आपके पोस्ट ऑफिस में आ चाहे आपके बैंक में बचत खाता खोलवाओ पड़ी, ताकि जब ये तुहार प्रीमियम का अवधि 60 वर्ष पूरा हो जाए तो ये पेंशन तो के वही खाते में आई।
0: और जानत हो बिरजू भैया, ये बचत खाता जोन बतौला है, बचत खाता खोले के साथे साथे बचत खाता में अपन आधार नंबर और अपन मोबाइल नंबर वो दोनों के ओसे जुड़वाए के होई, ओके लिंक कराए के होई, ताकि जोन ई पेंशन योजना का जो फायदा हो वो तोरे खाता में बचत खाता में मतलब सरकार की तरफ से आ जाए आपके खाता में, है ना, और आप ओकर लाभ उठा सका।
1: तो हम तो कहब कि भैया देखा चढ़बड़ के हिस्सा ले जी। आ देखा ये बोला भैया,
0: हाँ बिरजू भैया,
1: हमन का तो बात बत कही तो होते रही भैया, लेकिन देखा आज के हमन के बत कही में हो
0: कद्दू वर्गी सब्जियों में रोग का प्रबंधन कैसे कर जाए, एक बारे में जानकारी दिले हों डॉक्टर राम डॉक्टर डंगर राम भारद्वाज, और इनसे बात बतकई कैले हों सतीश कुमार यादव भैया, तो आवाई नगद का बतकई हो, पंच लोग भी सुने और हम लोग भी सुनल जाए।
1: एकदम सुनवाया दो भोला भैया।
2: आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं डॉक्टर डंगर राम भारद्वाज। आप प्रधान वैज्ञानिक रह चुकल हुआ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। आज हमने लोग आपसे जानल जाए कि जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उनमें कौन कौन रोग लगत हैं और उकर का प्रबंधन हो सकेला। तो डॉक्टर साहब हमने के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब आज अपन विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियन में रोग का प्रबंधन का होके की चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भैया के ई बताए कि ई सब्जी कद्दू वर्गीय जो है उनमें कौन कौन सब्जी आवेलिन।
3: निश्चित तौर से किसान भाइयों, इसमें वर्षा के मौसम चल रहा जिसे हम कहते हैं वर्षाकालीन फसलें, और इसमें देखें हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां जितनी भी हैं वो लतादार हैं, यानी कि लता के रूप में बढ़ती हैं। इनमें लौकी, कुम्हड़, करेला, खीरा, परवल, कुंदरू, चिकनी तोरी, पेठा और आपका और फसलें हैं जिससे हम कहते हैं कि करतोली है, ककरोल है, नसदार तुरई है। ये फसलें किसान भाई अपने खेतों में वर्षाकालीन फसल के रूप में लेते हैं।
2: अगर एक बार देखा जाओ तो उपयोगिता भी हमारे किसान भी उनके आप बताएं।
3: और निश्चित तौर से जैसा आपने कहा कि अगर पूरी सब्जियों की बात कर ली जाए तो करीब 7% के आसपास हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां मार्केट में हमेशा बनी रहती है।
2: जी।
3: रही बात इसकी उपयोगिता की, तो उपयोगिता को आप समझ सकते हैं कि ये जो है कम इनपुट यानी कम लागत वाली फसल है, कम रसायन उपयोग वाली फसल है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक गुणों को देखा जाए तो ये सबसे उत्तम सब्जी के रूप में मानी जाती है, पाच्य है, सुपाच्य है। रही बात कि हम केवल सब्जी फलों की खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच में कोमल पत्तियां हैं, उनके फूल हैं, उनकी टहनियां हैं, उनके कलियां हैं, सब कहीं न कहीं सब्जी के रूप में उपयोग में आती हैं। रही बात आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जो लागत कम है उत्पादन ज्यादा है, 10 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास की उत्पादन पड़ता है, तो किसान भाइयों को आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप देखें उनके बीजों का भी बहुत महत्व है।
2: अच्छा।
3: आपने खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, ककड़ी के बीज, आजकल कुम्हड़ का बीज तो स्वास्थ्य के लिए माना ही जाता है। रही बात कि किसान भाई बेमौसम भी इसी खेती कर सकते हैं, नदियों किनारे कर सकते हैं, छतों पर कर सकते हैं, मचान बना के खेती कर सकते हैं, तो सीमित जगह पर सीमित लागत से उत्तम जो है लाभ इन सब्जियों से प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, किसान भाई अचार भी बना सकते हैं, किसान भाई मिठाई बना सकते हैं, करेला का बना सकते हैं अचार।
2: जी।
3: जैसे अगर देखें तो पेठा का मिठाई बनती है, आजकल परवल की मिठाई मार्केट

0: मार्केट में है। तो मेरा कहना यह है कि अगर निर्यात को देखें तो ये एक ऐसी समूह है सब्जियों की जो हर समय आपके बाजार में हर लोगों के पहुंच के आसपास है।
1: एक निर्यात ये लोग कैसे कर रहे हैं, अगर ये सब्जी का लगावत है अपन सब्जी का पौध से जो उनके सब्जी निकला था उसका निर्यात में क्या क्या ध्यान रखा और उसका प्रबंधन क्या करें?
0: किसान भाइयों देखिए, जब हम निर्यात की बात करते हैं, दूरस्थ बाजार की बात करते हैं, तो गुणवत्ता की बात नहीं संपूर्ण गुणवत्ता की बात की जानी चाहिए
1: जी।
0: हमारी एक तो दूसरे देशों में जो सब्जियां हैं शिकार की जाती हैं वो कार्बनिक दृष्टि से उत्तम हो, दूसरी वो सही मौसम में हो, तीसरी सही अवस्था में उसकी तुड़ाई हो, चौथी उसकी सही अवस्था में तोड़कर पैकिंग के साथ दूरस्थ स्थान पर भेजने की उत्तम व्यवस्था हो। अब रही बात निर्यात की, जहां तक आप कह रहे हैं तो हम बड़े पैमाने पर अपने यहां से खीरा भी भेज रहे हैं, कुमड़ भी भेज रहे हैं, लौकी करेला पहले से ही मार्केट यानी विश्व के बाजार में पड़ा हुआ है। लेकिन बात आती है कि अन्य सब्जियां क्यों नहीं, आज हम परवल भी भेज रहे हैं, कुंदरू की बड़ी मांग है दूसरे देशों में, विशेष तौर से खाड़ी के देशों में। इसके अलावा अगर आप चलें तो हमारे पास जो घरकिन है, घरकिन मतलब छोटा खीरा, उसमें दो प्रकार का होता है, एक तो उभड़ा वाला है तो और जैसा चिकना वाला, तो उभड़े वाले की बहुत ज्यादा मांग है। तो कह सकते हैं कि विश्व बाजार भी आपके सामने खुला हुआ है, दूरस्थ बाजार भारत के कोने कोने में है, कहीं पहाड़ है, कहीं जहां आपका कहते हैं राजस्थान है, कहीं मैदानी भाग है, तो सर हर सब्जी हर समय नहीं होती, लेकिन संरक्षित व्यवस्था में नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, पहाड़ों पर कुछ न कुछ सब्जियां कद्दू वर्गी होती ही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि निर्यात की संभावना हमारे यानी समुद्र किनारे से लेकर के पहाड़ी क्षेत्र तक है।
1: डॉक्टर साहब आप तो बड़ा बढ़िया बतैनी कि एक कैसे निर्यात कर जाओ और कैसे एक प्रबंधन हो, लेकिन हम आपसे और एक चीज जानना चाहब कि जो हमने लोग सब्जी लगावत है, हमारे किसान भी लोग लगावत हुए, तो उसके रोग से कैसे बचाओ, उसमें कौन कौन रोग लगेला, और थोड़ा सा आपके इससे पहले हम यो जानना चाहब कि वो लोग बीज का चुनाव कैसे करें और कौन से उपयुक्त बीज हों जो न सिर्फ कुछ फायदा मिल सके।
0: किसान भाइयों देखिए, आज हम बाजार में खड़े हैं और हमारे पास भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बहुत बड़ा शोध केंद्र है
1: जी।
0: वहां पर हमारे हर विभाग है, उन्नतशील किस्में वहां से प्राप्त हो जाएंगी, रोग प्रतिरोधी किस्में प्राप्त हो जाएंगी, बेमौसम में खेती करने की किस्में प्राप्त हो जाएंगी। तो बात आती है कि आपने कहा किसान भाई बीजों का चयन कैसे करें। एक तो बीज जब आप चयन करें किसान भाइयों, जब बीज ही आपका सबसे बड़ी लागत है तो उत्तम गुणवत्ता का बीज होना चाहिए। ये ऐसे संस्थान ऐसे स्थान से खरीदी जानी चाहिए जो अपने नियत समय में पूरी तरह से एक आकर्षक और अधिक उपज दे, कम लागत लगे, और दूसरी ये भी बात है कि हम जो गुणवत्ता चाहते हैं क्या वो मानक के अंतर्गत इंकित है कि नहीं है। अब बात रही बीज की चयन की, तो बीज हमेशा पूरी तरह से पूर्ण रूप से पका हो, पहली आवश्यकता है। दूसरा, जब आप लेते हैं तो बीज का जब पैकेट खोलते हैं उतने ही समय के लिए शोधित है, जब बीज को लें तो आप निश्चित तौर से शोधित करके ही लगाएं। और शोधित कैसे करें, जब आप बाहर निकालते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा पाउडर आपके पास बड़ी आसानी से सुलभ है, आप उसको ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करके उसको आप छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए ट्राइकोडर्मा नहीं मिलता है तो आप एमीडा क्लोरोपिड ले लीजिए और उसका करीब 2 ml के आसपास 1 लीटर पानी में, अगर बीज के वजन के अनुसार भी डाल सकते हैं जो भी मात्रा हो, तो 8 से 10 घंटे तक उसको उसी प्रकार के पानी में भिगा कर रखिए। भिगा कर रखेंगे तो देखेंगे कुछ तैर जाता है
1: जी।
0: उसको निकाल करके बाहर कर दें, जो 8 घंटे के बाद निकालेंगे तो उसको गीले बोरे पर छान करके रख दें, फिर देखेंगे कि अगले 18 घंटे के बाद यानी कुल मिला के 24-25-26 घंटे के बाद आपको थोड़ी सी उसकी फुलाव और अंकुरण मिलेगा। इस प्रकार से आप उसका बीज लगा सकते हैं। जब ये क्वालिटी बीज आपके पास आ जाएगा तो ये बीज केवल हम सीधे तौर पर खेतों में नहीं जाते, कभी कभी उसकी नर्सरी भी बनाते हैं। नर्सरी में क्या है, हमारे पास 4 इंच साइज का और आप 4 इंच साइज का उसमें 0.5 किलो के आसपास हमारे पास मिक्सचर यानी बालू, बायोमास यानी कि गोबर की सड़ी खाद और हमारे पास बालू, ये तीनों मिला ले। आजकल कोकोपीट भी आता है, कोकोपीट भी भर करके उस बीज को लगा दीजिए, वो कोने वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद आप इसको लगा करके जब पौधा 21 दिन का हो जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, यही क्वालिटी बीज होगी। जो क्वालिटी बीज भी आप देखेंगे उनकी कितनी जल्दी जमाव होता है, अगर लेट हो जाए जमाव आपका या मतलब कि कमजोर जमाव हो गया, उन पौधों का रोपण न करें।
1: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात बतानी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब लोग अपन ये खेती कर लेते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों का, तो इनमें रोग कौन कौन सा लगते हैं?
0: बहुत बड़ी बात किसान भाइयों, यही एक हमारी एक कहते हैं ना कि चिंता का विषय है
1: जी।
0: आज 30% नुकसान हमारे किसान भाई केवल रोगों के वजह से, रोग और कीड़ों की वजह से नुकसान पहुंचाते हैं। निश्चित तौर से जानकारी होती है कि जब हम पौध लगाते हैं, चाहे वो आप पाली हाउस में पाली ट्यूब में लगा लें, चाहे आप उसको सीधे तौर पर बीजों को लगा लें, लेकिन

0: जो ही जमता है तो एक बीमारी आती है, उसको हम लोग कहते हैं कालर राट। कालर राट का मतलब जहां से निकलता उसे किनारे,
1: अच्छा,
0: वहीं से सड़न हो जाता है। तो इसको कभी कभी बीज एवं नर्सरी पौध में नव अंकुर पौधों पर ये सबसे ज्यादा आक्रमण करता है। अब इसमें कौन सा ऐसा है फूंद जो उसको नुकसान पड़ता है, उसको हम कहते हैं राइजोक्टोनिया सोलेनी।
1: अच्छा,
0: और ये ऐसा फफूंद है जो चारों तरफ से उसको एकदम कोमल भाग को पानी जैसा बना देता है और पौधा सड़ करके गिर जाता है। अब रही बात कि हम इससे बचाव कैसे कर लें, एक तो बचाव करने के लिए कि चाहे आप नर्सरी जहां लगा रहे हैं वहां गोबर की खाद, नीम की खली दोनों मिक्स करके जरूर दें। उससे क्या होगा कि पानी जो है तुरंत लगेगा, रिसाव हो जाएगा। क्योंकि आपने पाली ट्यूब में लगा रखा है छोटे छोटे, तो उसमें कोकोपीट है या दूसरी संरचना बालू है या गोबर की सड़ी खाद है, मिट्टी मिला करके वन संबंधी एक कंपाउंड जो लगाए हैं तो नीचे छेद कर दें तो पानी निकल जाएगा, आपका पौधा तो पूरी तरह से मजबूत पैदा हो जाएगा। अब मान लीजिए नियंत्रण क्या करें, मान लीजिए कि संक्रमण हो ही गया है तो खेत में किसान भाइयों एजॉक्सी एस्ट्रोबीन आता है वो 48% का होता है, बड़े आसानी से मार्केट में, लेकिन उसके साथ आप क्लोरोथैनोलिल ले लें वो 40% का आता है, या सिगरेट केवल 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल दें और उसको घोल करके पूरे पौधे जब अंकुरित हो रहे हैं या अंकुरित थोड़ा सा हो गए हैं यानी 21 दिन तक आते आते आप 2-3 छिड़काव कर दें, आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित।
1: जी, मतलब 6-7 दिन 7-7 दिन पे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं ये बताएं
0: किसान भाइयों। देखिए, सबसे बड़ी बात भाई साहब ने बताई कि आखिरकार दो अवस्था है, एक तो जमीन के नीचे बीज शोधन को मैंने बता दिया
1: जी,
0: फिर बीज कैसे अंकुरित हो रहा है उसको बता दिया, अब आइए उसके वृद्धि और विकास की तरफ चलते हैं कि देखते हैं क्या होता है
1: जी।
0: सबसे बड़ा किसान भाइयों को प्रारंभिक अवस्था से लेकर के बाद की अवस्था सबसे खतरनाक है वो है आपका कहते हैं वायरस, जिसको कहते हैं मोजैक। मोजैक का मतलब ये हुआ कि ये रोग ऐसा है जो सफेद मक्खी के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक डाली से दूसरी डाली पर, एक पत्ती एक कलिका से दूसरी कलिका डाली तक पहुंचता है। अब ये क्या, इसका लक्षण क्या होता है, इसकी पत्तियां पहले तो छोटी हो जाती हैं, पौधों के बीच में जो तना होता है उसके बीच की जो गांठ की दूरी होती है वो कम हो जाती है। अब किसान भाई करें क्या, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप पहले उस कीट को रोकिए जो उसको फैलाने में सहायक है, इसको कहते हैं हम एमीडा क्लोरोपीड। तो एमीडा क्लोरोपीड का जो है मैंने बताया कि 48 SF मॉडल आता है, 5 से 9 ml, पौधा छोटा है तो 5 ml, बड़ा है तो 9 ml, 1 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव कर दीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने एमीडा क्लोर से बीज के जो है शोधन की बात की, 17 W आता है उससे छिड़काव कर दीजिए आप। लेकिन एक और आप काम कर सकते हैं कि अजाटी रेक्टीन, एक तरह से कहते हैं नीम का बना हुआ सत्य तत्व, ये मार्केट में बाजार में उपलब्ध है, इसका 300 ppm 10 ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव कर लें और मुझे लगता है किसान भाई इससे आपकी छुटकारा मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि 40 दिन तक पूरी तरह से सुरक्षित हमारा पौधा रहे तो एक बहुत आसान दवा है थायमेथिक्जाम, ये 25 WG के नाम से आता है, यानी कि 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर के आप किसान भाई छिड़काव कर दें और आपका पूरी तरह से पौधा छिड़काव में सुरक्षित रहेगा, लेकिन अंतराल 10 से 15 दिन तक पूरे जीवन काल में बरकरार रखें
1: जी। डॉक्टर साहब तनी यही बताइए मेरे किसान भैलों के कि जो आपन ये कद्दू वर्गीय सब्जी है तो चाहे वो आप शुरू में ही बतानी है कि वो लौकी हो, कुमड़ा हो या करेला हो, जो भी लतेदार सब्जियां हैं या बेलदार कहल जा, तो इनमें और भी रोग कौन कौन किसान भैलों के प्रभावित कर सकेला, उनकी फसल के प्रभावित कर सकेला।
0: देखिए किसान भाइयों, जब पौधा बढ़ता है और इस समय तापमान भी ज्यादा है और आर्द्रता भी ज्यादा है, रोग का सबसे बड़ा कारण अगर प्रकृति में है तो ज्यादा तापमान और ज्यादा आर्द्रता, इसमें रोग जो ट्रायंगल बनाता है, जो त्रिकोण बनाता है, उसमें इन्हीं दो तत्वों का विशेष योगदान होता है, दोनों मिलता है तो रोग तेजी से फैलते हैं। मैंने बताया जिससे किसान भाई अपने एक पहले कीड़े से बचाव करके आप मोजैक से बच सकते हैं। अब आता है धब्बा, आप देखे होंगे पत्ती 4-5 पत्ती तक पहुंचती है उसमें धब्बे धब्बे पड़ने लगते हैं, उसको कहते हैं पत्ती धब्बा या पत्ती झुलसा, वो धब्बा आपस में जुड़ जाएगा तो उसको झुलसा कहते हैं। तो ऐसे ये होता है एंथ्रेनोज और सर्कोस्पोरा। तो मुझे लगता है कि इसके वजह से कार्बेंडाजी 47% WP आता है, 2.5 ग्राम मात्रा से आप छिड़काव कर दीजिए। दूसरी दवा आता है फल सड़न या फल ब्लाइट, इसके लिए जमीन से जो फल सटे होते हैं वो सड़ जाते हैं, और किसान भाई इसके लिए कुछ न करें, ट्राइकोडर्मा पाउडर 5 किलोग्राम मात्रा ले लें या 10 ग्राम प्रत्येक थाले में सुनिश्चित करके देते रहें। अगर लगे आपको कि नहीं इससे संभावना नहीं रुक रही है तो आपको देना पड़ेगा पूरी तरह से मेडिकल रिपीट। अब आइए बात करते हैं, हमारे पास एक है उकठा।

0: बहुत ज्यादा आता है किसान भाइयों को। ये उकठारोध खेत में पहुंचता है तो इसके लिए आपको ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबीन की जो दवा बताई थी मैंने एक मिलीटर मात्रा लेकर के छिड़काव करते हैं। आपको एक और बता देता हूं, इस समय पाउडरी मिल्ड्यू जब पौधा पूरी तरह से सितंबर अक्टूबर के महीने में आएगा तो पाउडरी मिल्ड्यू आएगी, इसको चुनिल आचिता बोलते हैं। स्प्रोथ क्या फुलजिनिया या रिसिफिक वजह से होता है और पौधों पर पूरी तरह से पाउडर जम जाता है, जैसे कि आप हमारे देते हैं ना पेठा उसे सतह बनता है, हर फसल पर बन जाता है। तो किसान भाइयों एक दवा आती है डाइनोकैप, अब उसकी जो है 48 इसी मात्रा यानी 0.03% या सल्फर लेकर के 0.2% का यानी 2% का छिड़काव करते रहें, आपकी फसल बच जाएगी। अब आता है आपको एक होता है मृदरोमी लासिता, ये पत्ती के निचली सतह पर एक तरह से पत्तियां जो है पीले पीले धब्बे बनाती हैं फिर सूख करके बैठ जाती हैं। अब करना क्या है इसके लिए, एक दवा आती है मैंकोजेब, जैसा मैंने बताया 10.2% या साइमोक्सिनिल की 8%, उसके साथ मैंकोजेब 64% वाली 2.5 ml मात्रा यानी 2.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके किसान भाई छिड़काव कर दें तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात रहेगी और हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, का सुझाव दिल चाहब आप हमारे किसान भैरों के कि कैसे वो लोग अपने कद्दूवर की सब्जी के बचाव करें और कैसे इसे लाभ ले सकें और कह लो कि आगे भी जो उनके बाजार भाव अच्छा मिल सके, एक बारे में अपन सुझाव थोड़ा दे दें।
0: निश्चित तौर से किसान भाइयों ये बात सबके मानस पटल पर आती है कि हम अपनी फसलों को तो पैदा करते हैं लेकिन दूरस्थ के बाजार में या उपभोक्ता के पास या हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों नहीं उतर पाती। आखिर उसके लिए सुझाव मेरा ये होगा कि पहले तो खेत में आप संक्रमित पौधे या पहले से पड़ी हुई ठूंठ को निकाल कर खेत को साफ रखें, जिससे कि आपका पूरी तरह से खेत नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं बना रहे। और चूंकि लतादार सब्जी है, अगर जमीन पर इसमें पैदा करेंगे तो निश्चित संपर्क में आकर के फले खराब हो जाएंगी, तो आप मचान बना करके खेती करें। दूसरा ये है कि कुछ लताएं हैं, कुछ फल हैं, कुछ फूल हैं जो निश्चित तौर से संक्रमित हो जाते हैं, तो उसको लगातार काट करके बाहर करें लेकिन फेंके नहीं, उसको जमीन के अंदर गाड़ दें। अब रही बात, मैंने बताया था प्रतिरोधी किस्में हैं, आप उगाइए उसको सतही एवं फब्बारा, कहने का मतलब मौसम तो ऐसे ही मार रहा है, आप पानी पूरा छोड़ करके खेतों में डालना चाहते हैं ना करें, आप ड्रिप लगाएं, थाला बनाएं, और चूंकि बरसात का मौसम है तो मैंने कहा कि नाली थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, गहराई कम हो तो निकल जाएगा, जैसा उसका उल्टा गर्मी में होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई सुनिश्चित करें तो आप देते रहें। तीसरी बात होती है कि जब पौधा बढ़ रहा होता है तो उस समय 2-3 जैसे न साल के बाद एक ही खेत में बार बार खेती ना करें, फसल चक्र को अपनाएं, कद्दू वर्गीय सब्जी से हट करके कोई और फसल ले लें और मृदा सौरीकरण, गर्मी आए पूरी तरह से आप पॉलीथिन बिछा दीजिए, सौरीकरण करिए और पूरी तरह से सुनिश्चित अपनी खेती को उपज के माध्यम से क्वालिटी के माध्यम से आगे बढ़ाएं।
1: एक प्रकार से किसान भैया लोग अपने कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग का प्रबंधन कर सके ना, अपन खेती बाड़ी कर सके ना। डॉक्टर डंगाराम भारद्वाज जी, आप हम लोगों के कार्यक्रम में आनी और इतना बढ़िया जानकारी देनी, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोला भैया।
3: हाँ बिरजू भैया,
2: देखा हो बड़ा नगद के बत कही भइल है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन कैसे करे चाहिए ऊपर डॉक्टर डंगराम भारद्वाज का बत कही रहे। आ भैया बहुत फरियाए के सतीश कुमार यादव भैया पूछल तो बड़ा बढ़िया ले आ देखा हो बतौला कि भाई देखा अगर तो कद्दू वर्गीय सब्जी का अगर खेती करत हुआ तो खास करके ध्यान दा, जब बीज डालत हुआ तो ओकर ध्यान दा रख रखाव के भाई कौनो अगर कीड़ा मकोड़ा लगत हुआ तो अगर बढ़िया से पहले ही उपचार कर दा,
3: शोधित बीज रहे ताकि अगर शोधित बीज रही तो ओकर पैदावार भी अच्छा हुई।
2: आ देखा यो बतौलना भैया कि आजकल बहन लोग वहीं छत उत पर भी देखा बढ़िया से अपना सब्जी उब्जी उगावत हैं लोग और रोजमर्रा का सब्जी बहुत बढ़िया से
3: उगाए लोग अपने खाए भर का अपने छतवे पे घर का घर तीन लोग उगा लेते हैं
2: रोजमर्रा का सब्जी भैया। एकदम सही कला भैया, अधिका अब भगवान के बत कही तो होबे करी लेकिन आज के कार्यक्रम में मनसायन भी मर मनसायन करेगी है।
3: हाँ तो मन मनसायन में देखा अमलेश कुमार पांडे भैया का ये रोपनी गीत हो और हम लोग भी सुनल जाए, साथे साथे पंच भैया लोगन के भी सुनवा देवल जाए।
2: एकदम सुनवा दे भैया।

0: बरसे बदरवा, अमलेश कुमार पांडे भैया का ही रोपनी गीत रहल। देखा गीत गाओ नहीं तो हो गल बिरजू भैया।
1: हाँ भैया,
0: अब आगे के कार्यक्रम भी बता देवल जाए पंच लोगन के।
1: देखा भैया, अगला कार्यक्रम हमन का रही खेती किसानी का, 23/8/26 के दिन रविवार रही।
0: अच्छा भैया।
1: तो प्रातः 6:05 पर खेती के बात हुई। विषय रही तिलहनी फसल के कैसे देखभाल कैल जाओ। ये विषय पर जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह भैया। आज सांझ के बेला में तनि
0: आज
1: बता दा।
0: सांझी के 6:30 पे अपने कृषि जगत कार्यक्रम में हो बिरजू भैया।

0: पशुअन के लिए संतुलित आहार ए विषय पर जानकारी दिए डॉक्टर योगेश कुमार यादव भैया, और इनसे बात बत कही कैले हुआ दिनेश कुमार सिंह भैया, सरपंच लोग के सुनिए ध्यान से।
1: अच्छा देखा भैया, आप तो हमन का चले चलाओ के समय हो, तो पंच लोग से आज्ञा लेवल जाओ।
0: बिल्कुल लेवल जाए।
1: बोला भैया तो पंचो
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

तुलसी कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नौटंकी साला फिल्म से। अब आइए सुनते हैं सलामी फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है सुरेंद्र साथी ने, संगीत नदीम श्रवण का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार अनीता कुमारी, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, पुत्री राम संजीवन, पत्नी छविनाथ, निवासी तुलसी, पोस्ट लहंगपुर, थाना व तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर, जो दिनांक 19 जून 2026 को अपने घर से सुबह 10 बजे से लहंगपुर दवा ले कराने के लिए निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई हैं। इनके बारे में, इनका रंग गेहुआ, सामान्य शरीर है, लंबाई 5 फीट 1 इंच, लापता होने के समय गुलाबी कलर का स्टॉल पहनी हुई थी, पर्स मेहंदी कलर साड़ी पहनी हुई थी। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना लालगंज को या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त सूचना के अनुसार अर्जुन उर्फ गोलू मुसहर, पुत्र महेंद्र मुसहर, माता का नाम सुगिया, ये बोल नहीं पाते हैं, ये केवल माता मम्मी बोलता है। ये निवासी है रानी तालाब विजयपुर, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर के। इनकी उम्र 17 वर्ष है। लापता होने के समय इन्होंने नीले रंग का पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहने हुए थे। इनका रंग काला, लंबाई 5 फुट 1 इंच, मजबूत जिस्म है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर को सूचित करने के बाद खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा।
6: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।
6: स्वच्छता का दीप जलाएं।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए

0: मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा ऐसी स्किल और वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो समेत दुनिया भर में हो।
1: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने जापान की कंपनियों को यहां निवेश करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानाशी डेस्क स्थापित की जाएगी जो यामानाशी सरकार और वहां के उद्योगों और निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करेगी। इससे पहले यूपी जापान हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप के सेक्टोरल सेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जापान और भारत की क्षमताओं को जोड़कर हेल्थ केयर और केयर इकोनॉमी में बड़ा मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं आज यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली ऑफ जापान और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए एमओयू हुआ। एमओयू के तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्यूचुअल विजिट्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दोनों अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सेमीकंडक्टर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। जापान की ओर से सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौकों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक टीम भेजने की इच्छा जताई गई। श्री योगी ने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस अहम क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं के बीच सहयोग की काफी संभावना है। साथ ही जापान के अनुरोध पर सितंबर में होने वाले टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में उत्तर प्रदेश के शामिल होने पर भी सहमति बनी। इससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन।

0: है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में इस समय जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल की चतुर्थ वाहिनी मोहनलालगंज में जवान बैरक, अधीनस्थ अधिकारी मेस और आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्रीय मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, संयुक्त चिकित्सालय गोरखपुर और 22वीं वाहिनी महाराजगंज के विभिन्न भवनों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए कार्मिक कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं।
2: हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी केंद्र अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण और नई तकनीकी शिक्षण के साथ साथ सैनिकों के परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सैनिकों के परिवार के उचित स्वास्थ्य, आधुनिक आवास होमेस और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मॉडर्न स्कूल तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि मंदिर परिसर में तय किए गए करीब 70 निर्माण कार्यों में से लगभग 60 काम पूरे हो चुके हैं और उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सावन में अब तक 53,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि हर सोमवार औसतन 5 से 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि सावन समाप्त होने तक ये संख्या करीब 80 लाख तक पहुँच सकती है।
3: 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। उस 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए हमारे 9 दिन और हैं उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आकलन है और यही आकलन शुरू में व्यक्त भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP जो हमारा बनाया गया है, उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में हो रही तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जिन रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है वहां राहत और बचाव कार्य में PAC की मदद ली जा रही है। उन्होंने आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की है।
4: विभिन्न जगह पे हमारी सभी तहसील प्रशासन, मेडिकल टीम, सिंचाई टीम सभी एक्टिव हैं और सभी को ये एहतियातन बार बार बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा नदियों नालों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें।
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी जनपदों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम।

टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

अब आइए सुनते हैं दहक फिल्म से ये रचना पंडित प्रदीप चटर्जी की आवाज़ में। कुणाल बोस और देवजी बेरा ने इस रचना की है, देवजी बेरा का संगीत है।

ये राग मल्हार आप सुन रहे थे दहक फिल्म से। अब आइए सुनते हैं हेट स्टोरी 4 फिल्म से। ये गीत है जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने संग और संजय गुप्ता ने, और संगीतकार हैं आर को।

हेट स्टोरी 4 फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता ने, संगीत आर्को का था। और अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है तनिष्क बागची और अराफात महमूद ने, संगीतकार तनिष्क बागची। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था तनिष्क बागची और अराफात महमूद ने, संगीतकार तनिष्क बागची। फिल्म का नाम था हाफ गर्लफ्रेंड। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज के हमारे कलाकार हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। सबसे पहले आइए सुनते हैं निदा फाजली की ये गज़ल, धूप में निकलो घटाओं। आवाज़ है जगजीत सिंह की, संगीत जगजीत सिंह का।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में वस्म बरेलवी की ये रचना मिली हवाओं में। एल्बम का नाम है सजदा। संगीतकार जगजीत सिंह।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में जफ़र गोरखपुरी की ये रचना मौसम को इशारों, धुन जगजीत सिंह की।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत में लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के गाए गजल। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गीत, आवाज है मुकेश की, शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे एक फूल चार कांटे फिल्म से, आवाज़ थी मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, संगीत शंकर जय किशन का था। अब आइए सुनते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत, आवाज़ है आशा भोसले की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आए दिन बहार के फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, ये गीत है फिल्म चिराग से। मजरू की रचना है, संगीत मदन मोहन का।

चिराग। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

सफर फिल्म के इस गीत के साथ ही रसमाधुरी कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

0: जी ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय

0: ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
4: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए

0: जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
1: मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत एक मजाहिम भरोसेमंद इख्तिराआत पर मबनी बाइख्तियार और सबकी शमूलियत वाले डिजिटल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद रखता है, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के तसव्वुर से रहनुमाई मिलती है। वो पुणे में आज ब्रिक्स ममालिक के वज़राए मवासलात की 12वीं मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए मवासलात और सीनियर नुमाइंदों ने इत्तिलाआत और मवासलाती टेक्नोलॉजीज, डिजिटल तब्दीलियों, इख्तिराआत और मजाहिम डिजिटल बुनियादी ढांचे में तआवुन को मजबूत करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस अपनी तवानाई की शराकत दारी को रिवायती पेट्रोलियम मसनूआत से आगे बढ़ाकर साफ और पायदार ईंधन तक वसत देने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई का तआवुन मुस्तकबिल में तवानाई की यकीनी फराहमी और साफ तरीन ईंधन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगा और ये पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी मौजूदा शराकत दारी पर तामीर किया जाएगा। हुकूमत ने आज एक बार फिर कहा है कि भारतीय मल्लाह बिरादरी की बहबूद और सलामती भारत की आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में रूनुमा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने का सिलसिला जारी रखे हुए है। दो गैर मुल्की झंडे वाले जहाजों के ताल्लुक से हुए एक वाक़े के बारे में बातचीत करते हुए जनाब जायसवाल ने बताया कि तमाम 22 मल्लाह महफूज हैं और हुकूमत इस सिलसिले में मुतालिका अहलकारों के साथ राबते में है ताकि उनकी हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाया जा सके। हॉकी में FIH आलमी कप के सेकेंड पूल के मरहले के पहले मैच में भारत की ख्वातीन की टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी तरक्की और वसाइल की हथियारकारी के मुतालिक तशवीश के दौरान तरक्की के लिए एक दरख्शां आलमी मकाम के तौर पर उभर रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर हर एक गैर कानूनी इमिग्रेंट को मुल्क से बाहर निकालने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। हुकूमत का कहना है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा ज़खीरा मौजूद है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने 62,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने के साथ मोबाइल फोन मैनुफैक्चरिंग की स्कीम का इफ्तिताह किया ताकि मुल्क में सप्लाई की चेन और आलमी मुकाबला जाती सलाहियत को फरोग दिया जा सके। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सबब रूनुमा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं मुजफ्फर वारसी की ये गज़ल, अब से बरसात की रुत। आवाज़ है चित्रा सिंह की, संगीत जगजीत सिंह का।

अब आइए सुनते हैं वसीम बरेलवी की ये रचना, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में, धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

0: इसी के साथ गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का आधारित कार्यक्रम अंजुमन समाप्त करने की ज्योति स्वरूप को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका।
1: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य पत्रिका के इस माह के अंक में। इस अंक में सबसे पहले संपादकीय, आपकी थाली में है आपकी सेहत का राज। श्रोताओं, हमारे जीवन में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की बुनियाद है। हम अक्सर कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इसीलिए हमारी थाली में क्या है इसका सीधा संबंध हमारी सेहत से है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वाद और सुविधा के कारण हम कई बार पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, ज्यादा तला भुना भोजन या जरूरत से ज्यादा मीठा और नमकीन खाना पसंद करने लगे हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए महंगे खाद्य पदार्थों से ज्यादा जरूरी है संतुलित और विविधतापूर्ण भोजन। हमारी थाली में अनाज के साथ दालें या अन्य प्रोटीन स्रोत, हरी और रंग बिरंगी सब्जियां, साथ ही मौसमी फल तथा दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। सब्जियों और फलों से मिलने वाले विटामिन्स, खनिज और फाइबर शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं, जबकि दाल, चना, राजमा, दूध जैसे पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, भोजन की मात्रा। पौष्टिक भोजन भी जरूरत से

0: ज्यादा खाया जाए तो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए अपनी उम्र, गतिविधि और स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार भोजन लेना चाहिए। साथ ही बहुत अधिक नमक, चीनी और तले हुए खाद्य पदार्थों को सीमित करने में ही समझदारी है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी पढ़ने की आदत भी उपयोगी हो सकती है और ये हमें अपने बच्चों को अभी से सिखाना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पानी को मत भूलिए। पर्याप्त पानी पीना भी स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आप खाने की मेज पर बैठें, अपनी थाली को ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी थाली में स्वाद के साथ सेहत भी है? याद रखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। अपनी रोजमर्रा की थाली में छोटे छोटे संतुलित बदलाव भी अच्छी आदतों की शुरुआत बन सकते हैं। तो आइए आज से अपनी थाली को सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि सेहत की थाली बनाएं। ये था संपादकीय। श्रोताओं, पत्रिका में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं बच्चों में एलर्जी, जरूरी सावधानियां, इस विषय पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतम कुमार से की गई बातचीत। श्रोताओं, बच्चों में एलर्जी एक आम समस्या है। एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन इसका कारण जानना और कारण जान के समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है, विशेषकर बच्चों के मामले में। एलर्जी के क्या कारण हो सकते हैं, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतम कुमार। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार, सभी श्रोताओं एवं अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम।
0: सर, आज हम लोग एलर्जी और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बच्चों में एलर्जी है क्या और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं।
1: एलर्जी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक ओवर रिएक्शन है। जब किसी बच्चे को धूल या परागकण या किसी पालतू जानवर के बाल या किसी विशेष खाद्य पदार्थ जैसी सामान्य चीजों को भूलवश हानिकारक मान लेता है और जिसके निकालने के लिए हमारे शरीर से बहुत सारे केमिकल निकलते हैं लाइक हिस्टामिन, और इस रसायन की वजह से बच्चों में छींके, खांसी, सांस लेने में घरघराहट, सांस का फूलना, प्लस आपके चकत्ते स्किन पे होना, लाल लाल धब्बे होना, खुजली होना, ये सारे लक्षण उत्पन्न करते हैं।
0: जी, तो सर जब हम एलर्जीज की बात करते हैं तो बच्चों में होने वाली जो एलर्जीज हैं इसके कितने प्रकार हैं, क्या ये अलग अलग तरह की हो सकती है?
1: जी, सामान्यतः एलर्जी तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होती है एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सांस से रिलेटेड होती है। जब किसी बच्चे को सांस वाली दिक्कतें होती हैं कि किसी पॉलन से एलर्जी है, उसको छींके आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो आपके एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ जाती है। दूसरी होती है स्किन एलर्जी, कि हमारे शरीर के जो स्किन के पार्ट्स हैं वो भी किसी सब्जेक्ट या किसी केमिकल या ड्रेस के वजह से, वो कांटेक्ट में आने की वजह से वहां पे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तीसरा होता है हमारा खाद्य सामग्री से एलर्जी, कि किसी को हमारी गाय के दूध से एलर्जी है, किसी को जो मूंगफली है उससे एलर्जी है, किसी को सी फूड से एलर्जी है, किसी को इवन जो गेहूं होता है गेहूं के आटे से भी एलर्जी हो सकती है। तो मूलतः ये तीन प्रकार की एलर्जियां बच्चों में जो देखी जाती हैं।
0: ये तीन अलग अलग प्रकार की एलर्जीज हैं।
1: जी,
0: जब हम भोजन से होने वाली एलर्जी की बात करते हैं तो फूड एलर्जीज के जो मुख्य लक्षण वो क्या है?
1: फूड एलर्जी में मोस्टली जैसे अचानक से आपके अगर वो फूड नहीं सूट कर रहे हैं तो बच्चे को वॉमिटिंग होगी, बच्चे को डायरिया हो सकता है, बच्चे का वेट गेन नहीं होगा, लंबे समय तक डायरिया चलता रहेगा। जैसे अगर आप किसी को गाय के दूध से एलर्जी है तो जब तक वो दूध आप नहीं बंद करेंगे बच्चे को डायरिया कंटिन्यू रहेगा। जो भी फूड एलर्जी है उसे हमें पता करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए माता पिता को यह बहुत ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम किस दूध से या किस चीज से हो रही, किस खाद्य

0: सामग्री से हो रही है ताकि उसका बचाव वो कर सके।
1: सांस में होने वाली एलर्जी का आपने जिक्र किया
0: जी,
1: जो अस्थमा का रूप भी ले सकती है
0: जी,
1: तो क्या छोटी सी एलर्जी आगे बच्चे की कंडीशन को सीवियर कर सकती है? लाइक अगर उसे सांस लेने में किसी एलर्जी की वजह से दिक्कत हो रही है, लाइक जैसे पॉलन की एलर्जी हो गई, तो ये अस्थमा में बदल सकती है?
0: जी, अगर समय रहते ही बच्चे में एलर्जी की पहचान कर ली जाती है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है तो वो एलर्जी आपकी कंट्रोल हो सकती है। वो अस्थमा में चांसेस कम होंगे कि वो 5 ईयर्स होने के बाद मोस्टली वो सबसाइड कर जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और अगर हम एलर्जी मान के ही उसको ठीक है और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो ज्यादातर चांस है कि वो फिर आपके अस्थमा में चेंज हो जाए, दमा में चेंज हो जाए, जो कि बच्चे के लिए आगे ज्यादा ही घातक साबित हो सकता है।
1: पॉल्यूशन और धूल हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसका आम हिस्सा है, उससे हम बच नहीं सकते।
0: जी,
1: तो धूल और प्रदूषण जो है
0: जी,
1: वो भी बच्चों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं?
0: बिल्कुल। सबसे सामान्यतः कारण जो होता है हमारे सांस वाली एलर्जी के लिए धूल, धुआं, पॉलेंस जो हैं, यही हैं। और इनसे होने वाली जो समस्या है ज्यादातर बच्चों में यही होती है, छींके आना, नाक में खुजली होना, खांसी, सूखी खांसी होना, फिर उनकी सांस तेज चलना, घरघराहट होना, ये सारे लक्षण उनमें मिलते हैं। और बचाव के लिए अधिकतर हमें यही करना चाहिए, ज्यादातर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जहां पे भी रहें तो घर में जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो वो धूल के कण फिर हवा में उड़ते हैं तो वो इनहेल करेंगे तो एलर्जी और प्रोवोक होगी। तो उसको बचाने के लिए हमें गीला पोछा लगाना चाहिए घर में, बहुत भारी पर्दे ना हो, बराबर डस्टिंग नहीं करनी। अगर बच्चा है भी, अगर आप चादर चेंज कर रहे हैं तो बच्चे को दूसरे कमरे में करके तब करें। और चादर को हफ्ते में कम से कम एक बार तो उसको गर्म पानी में धुलें ताकि जो भी डस्ट माइट है उससे बचाया जा सके बच्चे को। अगर घर में कोई आपके पालतू जानवर है जैसे कि कुत्ता या बिल्ली, उनके जो बाल होते हैं उससे भी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको अवॉइड करें। तीसरी चीज जो घर में सबसे कॉमन है कि अगरबत्ती, धूप बत्ती या मच्छर वाली जो कॉइल होती है उसे सुलगाया जाता है, लेकिन वो जितना ही हमें फायदा देता है दिखता है लेकिन वो उतना ही हमारे बच्चे को नुकसान करता है जिन बच्चों को ये एलर्जी की संभावना है।
1: सर, नॉर्मल सर्दी जुकाम
0: जी
1: और एलर्जी,
0: जी,
1: इसमें पेरेंट्स किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कैसे पता करेंगे कि ये नॉर्मली सिर्फ बच्चे को थोड़ा हल्का सा जुकाम हुआ है या एलर्जी ट्रिगर कर रही है?
0: जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। जो एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन है दोनों में बहुत ही हल्का ही डिफरेंस होता है, बस वही हमें ध्यान देना है। वायरल इन्फेक्शन जो होगा उसके साथ हल्का या तेज बुखार भी हो सकता है बच्चे को, प्लस वायरल इन्फेक्शन के साथ कई बार डायरिया और भी सिम्टम्स आएंगे आपको। और वायरल इन्फेक्शन केवल 4 से 5 दिन का रहेगा, उसके बाद सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं अधिकतर। जो एलर्जी होगी उसमें ये सिम्टम्स आपको हफ्ते, महीने, ऐसे लंबे समय तक चलते रहेंगे। दूसरी एलर्जी में फीवर की कोई वो नहीं मिलती है कि हिस्ट्री की बच्चे को बुखार भी आ रहा है या बच्चे को उल्टियां हो रही हैं या दस्त भी हो रहे हैं, ये सब लक्षण नहीं मिलते हैं। और एलर्जी जो है ये लंबे समय की रहती है, 3-4 दिन में ये नहीं ठीक होती है।
1: अच्छा, जो फूड आइटम्स होते हैं, खाद्य पदार्थ,
0: जी,
1: ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिससे बच्चों को एलर्जी होने की संभावना अधिक रहती है?
0: जी, जैसा कि हम लोग ने अभी चर्चा किया कि जो खाद्य सामग्री ज्यादातर जो बच्चों में हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा होती है छोटे बच्चों में गाय के दूध से, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। तो हम लोग जो नवजात शिशु होते हैं शुरू से ही माताओं को कहा जाता है कि 6 माह तक केवल माँ का स्तनपान कराएं, और उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि जो वीनिंग होता है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो कंटिन्यू करना है, और गाय का दूध या जानवर का दूध हम लोग 1 साल के बाद ही शुरू करें
1: जी।
0: तो इससे जो काउ मिल्क एलर्जी है वो अवॉइड करने का चांसेस ज्यादा रहता है। दूसरा होता है कि जो हमारी मूंगफली है या सी फूड आइटम फिश है उनसे एलर्जी। तीसरा होता है गेहूं के सामग्री से बनी हुई चीजों से एलर्जी, जैसे रोटी। तो बच्चों ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं होना,

0: बराबर डायरिया होना, ये सब लक्षण के बाद जब इनकी जानकारी होती है तो इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, वही उसका बचाव है।
1: तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना ही ज्यादा उचित रहेगा।
0: जी, सामान्यतः हम लोग जो भी एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन में कंफ्यूजन की वजह से अधिकतर लोग मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयां लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसे में आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक अननेसेसरी लेना, अननेसेसरी दवाइयां लेना, जिससे आपकी एलर्जी, आपके बच्चे की एलर्जी वो आगे चल के और बढ़ सकती है और वो अस्थमा का रूप ले सकती है।
1: जी, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो क्या एलर्जी जो है वो कम होने लगती है, उसके होने की संभावना कम होती जाती है?
0: जी, जैसे कि हमने बताया कि अगर एलर्जी का आपने अर्ली पहचान कर लिया और अगर अर्ली आपने उसको डिटेक्ट कर लिया, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया, तो चांस है कि एलर्जी धीरे धीरे करके आपको सबसाइड हो जाए। अधिकतर पाया गया है कि अगर एलर्जी है, जैसे आपकी खाद्य सामग्री वाली एलर्जियां जो हैं, वो अगर किसी पदार्थ से है तो वो आपको रहेंगी। जैसे अगर गेहूं के किसी पदार्थ से किसी को एलर्जी है
1: जी
0: तो वो अब उसको हमेशा ही रहेगी, जिसे हम लोग सीलिएक डिजीज बोलते हैं। ग्लूटेन प्रोडक्ट से उनको एलर्जी होती है, काउ मिल्क से एलर्जी रहती है। तो ये जो डाइजेस्टिव हमारी खाद्य वाली है वो तो कंटिन्यू रहती है। मोस्टली जो कंट्रोल हो जाती है, जैसे स्किन एलर्जी है वो कुछ कुछ कंट्रोल हो जाती है, और ये जो आपको श्वास वाली जो एलर्जी है वो भी कुछ एज के बाद कंट्रोल, जैसे आप बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, होशियार होता है, वो खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाता है कि वो धूल वाले एरिया से नहीं जाएगा, धुआं वाले एरिया से नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एलर्जी कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होती है, बचाव ही उसमें इलाज है।
1: अच्छा, तो क्या बचपन में होने वाली एलर्जी
0: जी
1: अगर प्रॉपर उसका इलाज न किया जाए समय रहते तो आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी में बदल सकती है, चाहे वो
0: जी
1: स्किन एलर्जी हो, चाहे सांस में होने वाली एलर्जी हो?
0: अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए किसी भी एलर्जी का,
1: जी
0: तो एक गंभीर रूप ले सकता है। जैसे कि सांस वाली एलर्जी, जिसको हम लोग एक मेडिकल टर्म में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जो कि एक सिंपल छींक और नाक का बहना, नाक में खुजली होना, ये लक्षणों से होता है। अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें तो ये आगे चल के सांस फूलने जैसे खांसी आना, अस्थमा का रूप, दमा का रूप ले सकता है, जिसके लिए आगे बच्चे को फिर इनहेलर पे हमें रखना होगा। वो लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा।
1: सीवियर अस्थमा में बदल सकता है
0: जी
1: ये?
0: बिल्कुल। दूसरा, हम स्किन एलर्जी की जो बात कर रहे हैं, स्किन एलर्जी मोस्टली जो होती है टेम्पररी रहती है, और ज्यादातर चांस है कि वो किसी कांटेक्ट की वजह से होती है, तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर स्किन एलर्जी आप प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो आगे चल के आपके ना केवल स्किन से रिलेटेड इश्यू होगा, प्लस आपकी सोशल एक्टिविटी, जो डे लाइफ एक्टिविटी है, उसको भी हैम्पर करेगा, कि आप दिन भर इचिंग कर रहे हैं, आपका दिमाग नहीं लग पा रहा है उस काम में, बच्चे का मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, ये सारी चीजें और बढ़ सकती हैं। जो खाद्य सामग्री वाली है, अगर उसका भी अगर प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों में ज्यादातर होगा कि बच्चे का वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होता जाएगा, वो कुपोषित होता जाएगा, खून की कमी होगी, अत्यधिक अगर एलर्जी बढ़ेगी तो बच्चे में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है और बच्चे के ग्रोथ को लेके काफी दिक्कतें हो सकती हैं।
1: अच्छा डॉक्टर, आप स्किन एलर्जी की जब बात कर रहे थे तो
0: जी
1: अक्सर छोटे बच्चों के शरीर पर कभी-कभी अचानक ही लाल चकत्ते जैसे छोटी-छोटी फुंसियां आ जाती हैं
0: जी
1: या उन्हें हल्की रैशेस
0: जी
1: दिखाई देने लगते हैं स्किन
0: जी
1: पे,
0: जी
1: या उन्हें रह रहकर इचिंग होती है उस पे।
0: जी
1: तो ऐसे में माता-पिता को क्या करना चाहिए? क्या ये भी कोई एलर्जी है?
0: जी हम सामान्यतः देखें तो जो न्यूबर्न नवजात शिशु होते हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमारी माताएं बहनें पैदा होते बच्चे को जो ऑयल मसाज करती हैं, मोस्टली वो बॉडी को उनके सूट नहीं करता है, जो एक एलर्जी का कारण बनता है, उसकी वजह से चकत्ते निकलते हैं, धब्बे निकलते हैं, खुजलियां होती, दाने दाने हो जाते हैं। तो ये हम बचा सकते हैं,
1: जी
0: मोस्टली हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं सारी माताओं बहनों को कि बच्चों को कोई ऑयल या तेल लगाने की तुरंत आवश्यकता नहीं है, उस स्किन को डेवलप होने दें। वो बहुत ही नाजुक स्किन है जिसकी वजह से वो संवेदनशीलता

0: की वजह से वो दाने निकलते हैं।
1: जी सर, एक बात और बताएं कि जैसे जो श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जीज हैं,
0: जी
1: तो अब इनको पूरी तरह अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे को इन चीजों से बचाया जा सके? अगर वो बच्चा घर में है तो घर में ऐसा हमें क्या सावधानियां बरतनी है?
0: जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि श्वास से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, तो जो भी एलर्जी है वो हमारी नाक के थ्रू जाएगी, जैसे कि धूल, धुआं, गर्दा, माइट्स जो होते हैं, जो बिस्तर में होते हैं वो, और ये सारी चीजें हम अपने घर में बच्चों को बचा सकते हैं कि जहां पे भी धूल, आप धुआं कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, क्वाइल जला रहे हैं, तो वो सारी चीजें अवॉइड करिए। चूल्हे पे खाना अब तो बहुत ही कम हो गया है, वो नहीं बनाना है। घर में आग ऐसे नहीं जलानी है, इन सब चीजों से। दूसरा, जब हम झाड़ू लगाते हैं उसको अवॉइड करना है, हमें गीला पोछा लगाना है सफाई करने के लिए, और जो बच्चे का बिस्तर है एटलीस्ट उसको हफ्ते में एक बार गर्म पानी में अवश्य धोएं, ताकि जो भी डर्ट्स माइट्स हैं वो निकल जाएं, ताकि वो बच्चे को जो भी श्वास वाली एलर्जी है उससे हम बचा सके।
1: सर एक बात और बताएं कि अक्सर मौसम बदलने पर बच्चों में एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है?
0: जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही आपके दो चीजें होती हैं, एक तो वायरल इन्फेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, दूसरा है एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस उस मौसम में ज्यादातर होते हैं जब आपका मौसम ड्राई है, धूल और पोल्यूशन ज्यादा हो रहे हैं और पॉलेंस ज्यादा निकल रहे हैं, जो मार्च अप्रैल ये वाला टाइम होता है, उस टाइम पे ये जो पॉलेंस निकलने के पराकण की वजह से एलर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये मौसम के अनुसार इस वजह से चेंज होता है। और दूसरा, जो अभी मौसम चल रहा है मानसून का हम बात करें इसकी, तो इस समय ज्यादातर बच्चों में एलर्जिक भी होते हैं और वायरल इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन इस वजह से एक तो बढ़ते हैं कि मौसम में थोड़ी सी गर्मी के बाद ठंडी होने की वजह से वायरस ग्रोथ ज्यादा होते हैं, और स्कूल जैसे ही ओपन होता है सारे बच्चे एक साथ फिर से मिलते हैं और एक दूसरे से इन वायरल इन्फेक्शन बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर हमें सिम्टम इस मौसम में देखने को लिए मिलते हैं।
1: जी, गंभीर एलर्जी की अगर स्थिति बनती है बच्चों में, तो ऐसे में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना है और तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है?
0: जी, एलर्जी सबसे पहले जो ज्यादातर होती है सांस वाली। अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत खांसी आ रही है और बच्चे का शरीर सांस लेते लेते इतना थक जा रहा है कि बच्चा सुस्त हो जा रहा है, तब तो हमें बच्चे को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसा लगेगा डॉक्टर उस हिसाब से, उस प्रक्रिया के अनुसार उसको इलाज करेंगे। दूसरी, फूड एलर्जी में कई बार सी फूड लेने के बाद एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है कि पूरा लिप स्वेलिंग हो जाती है, कई लोगों को सांस लेने में तुरंत दिक्कत होती है, तो ये परिस्थिति में तुरंत हमें चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, जो कि फूड एलर्जी के लिए होगी। स्किन एलर्जी में हम बात करें तो सीवियर आपके पूरे बॉडी पे चकत्ते निकलेंगे, ईचिंग होगी, स्वेलिंग होने लगेगी, उस केसेस में हमें भी तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए।
1: जी, तो जरूरत है कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों में एलर्जी किस कंडीशन में उभर रही है, चाहे वो खाद्य पदार्थ से संबंधित हो, चाहे श्वसन तंत्र से संबंधित हो, या फिर स्किन से रिलेटेड हो, ये माता पिता को ही ध्यान रखना होगा।
0: जी, सामान्यतः जो घर के मेंबर हैं वही बच्चे को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। डॉक्टर के पास आप 5 मिनट के लिए जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको घर वाले ही दे पाते हैं। घर वाले देख के ही वो एसेस करते हैं और ज्यादातर वो नॉलेज दे देते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे को अधिकतर इस चीज से एलर्जी हो रही है। जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी हो रही है तो वो उसको बंद करके देखेंगे कि क्या इसी से एलर्जी थी, तो उनको खुद एक आइडिया लगेगा हाँ, इसके बाद हमारे बच्चे को ठीक हो गया। या डायरिया हो रहा है गाय के दूध पीने से, तो गाय का दूध बंद करके देखेंगे तो बच्चा ठीक हो गया
1: जी।
0: या अगर बच्चा जैसे बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में गया हुआ था तो उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो अगर आपने उसको किसी अच्छे सेपरेट रूम में रखा जहां बहुत ही साफ सफाई है, वातावरण चेंज करने के बाद बच्चे में अगर सिम्टम्स ठीक हो गए, तो मतलब वो सांस वाली दिक्कत उसको एलर्जी की वजह से है।
1: बिल्कुल सर, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि ऐसी कौन सी स्वस्थ आदतें हैं जिनको अपनाकर हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं।

0: विशेष रूप से ये उभरने वाली विभिन्न प्रकार की एलर्जी से उन्हें बचाया जा सकता है।
1: जी सामान्यतः हम लोग जो बात करें तो बच्चों को एक तो सबसे पहले हेल्दी डाइट हमें देनी चाहिए। बच्चों को जितना हम जंक फूड देंगे, जितना कलर एक्सपोजर होगा, उतना ज्यादा चांस है एलर्जी एक्सपोजर के। दूसरा, हमें एक बैलेंस डाइट की बात कर ली, हेल्थ डाइट की बात कर ली। तीसरा, जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, जैसे कि हम आजकल टीकाकरण होते हैं फ्लू से और DPT, ये निमोकोकल, ये सारी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। और जो कि हम लोग करते हैं अधिकतर माता पिता, कि बच्चे को थोड़ा सा लक्षण हुआ, हम जाके मेडिकल से बिना चिकित्सीय परामर्श के दवा ले आए और हमारा बच्चा ठीक हो गया,
0: जी
1: वो हमें अवॉइड करना चाहिए। बच्चे के लिए हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए, एक माता पिता को, एक रिश्तेदार को भी, कि अगर बच्चे में कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो एक चिकित्सीय बिना परामर्श के कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी दवा, इवन खांसी की जो कफ सिरप्स आजकल आती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हर एज और हर खांसी के लिए अलग कफ सिरप होती है।
0: जी तो श्रोताओं, कुछ स्वस्थ आदतों को और अच्छी दिनचर्या को अपनाकर हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि वो हर मौसम का आनंद लें। सर, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद आपका और श्रोताओं का भी धन्यवाद।
0: बच्चों में एलर्जी, जरूरी सावधानियां, इस विषय पर बाल रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर प्रीतम कुमार से की गई बातचीत अभी आप सुन रहे थे। और अब श्रोताओं, चलते चलते आज का हेल्थ मंत्र। और हेल्थ मंत्र ये है कि भरपूर नींद है सेहत के लिए जरूरी। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, समय पर सोना और समय पर उठना सेहत का पहला नियम है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या काफी बदल गई है। देर रात तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना, पढ़ाई या काम करना और सुबह जल्दी उठ जाना, इन सब के बीच हमारी नींद का समय कम होता जा रहा है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि नींद तो बस आराम करने के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तब शरीर और मस्तिष्क दिन भर की थकान से उबरने का काम करते हैं। अच्छी नींद के बाद हम अगले दिन अधिक तरोताजा महसूस करते हैं और हमारी एकाग्रता बेहतर रहती है। सीखने और याद रखने की क्षमता में मदद मिलती है और हम अपने रोजमर्रा के काम ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल फोन को लगातार काम करने के बाद चार्ज करने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर और मस्तिष्क को भी आराम की जरूरत होती है। तो नींद को आप शरीर और दिमाग की प्राकृतिक रिचार्ज प्रक्रिया समझ सकते हैं। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर और मस्तिष्क में विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। पर्याप्त नींद उन्हें दिन भर सक्रिय रहने, पढ़ाई पर ध्यान लगाने और नई चीजें सीखने में मदद करती है। तो श्रोताओं, अच्छी नींद के लिए हमेशा किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, कुछ छोटी छोटी आदतें काफी मददगार हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हर दिन लगभग एक ही समय पर हम सोएं और जागें। दूसरा, सोने से पहले बहुत ज्यादा गतिविधियां या लंबे स्क्रीन टाइम से बचना चाहिए हमें। तीसरा, सोने की जगह को शांत, आरामदायक और साफ रखें। साथ ही रात में बहुत भारी भोजन करने से बचना हमेशा अच्छा होता है। इसके अलावा दिन में शारीरिक गतिविधियां और खेल कूद के लिए समय निकालें। बच्चों के लिए तो खेलना और सक्रिय रहना विशेष रूप से जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, अगर नींद आ रही है तो उसे बार बार टालने की आदत न बनाएं। और अंत में एक छोटी सी बात, श्रोताओं, हमारी जिंदगी में पढ़ाई, काम, मनोरंजन और जिम्मेदारियां सभी जरूरी हैं, लेकिन इनके बीच नींद के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर करिए, क्या हम अपनी नींद को उतनी ही अहमियत दे रहे हैं जितनी अपने दूसरे कामों को? और अगर जवाब है नहीं, तो आज से एक छोटा सा बदलाव जरूरी है। सोने का समय थोड़ा नियमित कीजिए और मोबाइल को कुछ देर

0: के लिए दूर रखिए और अपने शरीर को दीजिए पूरे आराम का मौका, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ रात का आराम नहीं है, ये अगले दिन को बेहतर बनाने की तैयारी भी है। तो आइए नींद को अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनाइए, समय पर सोइए, अच्छी नींद लीजिए और सुबह नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो श्रोताओं, ये था स्वास्थ्य पत्रिका का इस माह का अंक। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर आएंगे आपके लिए फिर कुछ खास। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी का शहनाई वादन। राग है माल कौंस।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी का शहनाई वादन, राग था मालकौंस। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। रात्रि के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए

0: वे पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are a commitment of his government.
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर ग्रुप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing 7 key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that 7 such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's policies. Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inaugurating a 6-day awareness exhibition on the Bhartiya Nyay Sahita at Kawakhali ground. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme, MPMS. The Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The Ministry of Electronics and IT has also notified the scheme. The scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain and stronger domestic manufacturing capabilities. addressing media in New Delhi.